मनी चा बुरा करते हाथ पलक फड़के हाय के दिल धड़के उमर की उठा कड़कती कमा कातिल अदा जालिम हया।

0: क्या?
1: मैं क्यों बेचैन रहता हूँ,
0: क्यों
1: मेरी इस बेकरारी की वजह क्या है, बता दूँ क्या
0: क्या

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Gabana. Burka, burka. La virtua la burka. Mirchi, burka.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello, Benji.
1: जी हाँ जी
2: ये एक सेकंड ये बहन जी हम आपके पड़ोस में रहते हैं। ये मेरा एक्चुअली बच्चा बहुत रो रहा है और मेरी वाइफ का फोन लग नहीं रहा है। वो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है। अगर
1: आप... आपके घर में कोई नहीं है क्या?
2: नहीं, वाइफ है, वो गई हुई है कहीं। तो आप थोड़ा सा, आपको अगर कुछ मालूम हो तो एक सेकंड बेटी चुप।
1: आप अपनी वाइफ को फोन करिए ना, उन्हें बुलवाइए जल्दी।
2: नहीं नहीं, मैं उनको ही फोन कर रहा हूँ। एक सेकंड। आली है मामा आएंगी, मामा आएंगी। एक सेकंड बहन जी, आप होल्ड करेंगी? एक सेकंड सर। आएंगी मामा, आएंगी, चीजी लाएंगी बेटू, चीजी लाएंगी। नहीं, चुप हो रहा। आई एम सो सॉरी, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं ऐसे।
1: नहीं, इसने डायपर पहना है तो चेक करिए, गीला तो नहीं है।
2: एक सेकंड, इधर आओ। हाँ, इधर आओ। देखो मामा आ गई, चीजी लाई। हाँ, डायपर गीला है बहन जी इसका,
1: उतार लीजिए उसको।
2: एक सेकंड रुकिए। ये इसके गले में अटक रहा है डायपर। एक सेकंड,
1: शायद आप बेब उतार रहे हैं उसका।
2: अच्छा, ये बेब है। एक सेकंड,
1: देखिए सुसु करा होगा उसने। देखिए,
2: हाँ सुसु ही करा है, सुसु करा है। चल
1: उतार दीजिए।
2: एक सेकंड उतार दिया। मैं जी, मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा कह देंगे, मैं स्पीकर फोन पे लगा देता हूँ, शायद आपकी आवाज से समझ आए जरा। देखो आंटी कर रही है। क्लैपिंग करो।
1: चुप हो जाओ, पेट दर्द वगैरह ना हो, आप इसको डॉक्टर के पास लेकर जाइए।
2: हाँ, मुझे भी वही याद आ रहा है। नहीं बहन जी, आप सही कह रही हैं। रात को ना इसने वो मुर्गा खा लिया था, जिससे पेट में दर्द हो जाता है और थोड़े बहुत कान खराब हो जाते हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने आपका नंबर डायल किया।
1: और मैं पागल हूँ। ओह नो।
2: अब जरा मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए एक बार।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
1: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
2: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
1: हिट गाने
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

आवाज और जुड़ गई आपके साथ फिर से वो आवाज। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और भाई इट फील्स सो गुड। हर बार जब भी मैं अच्छी खासी छुट्टियों के बाद जब लौटती हूँ ना, तो बस बड़ा ही ऐसे लगता है कि यार सुकून लगता है अपने कंट्री आने के बाद, कतर पहुंचते ही। और ऐसा लगता है कि यार बस आ गए हैं, अब अपनों के बीच आ गए हैं। सो वेल, काफ़ी दिन के बाद मैं आई हूँ, 10 दिन के बाद में तकरीबन। एक्चुअली 10 दिन ही था मेरे ख्याल से, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यार काफ़ी लंबा था। मेरे ख्याल से तकरीबन 15 दिन तो हो ही गए होंगे। बट राइट नाउ यहाँ पर हम आ गए हैं, कतर की बातें करेंगे। मैं कहाँ गई थी उसके बारे में भी बताऊंगी थोड़ी ही देर में, लेकिन उससे पहले दिलजीत पाजी का गाना आप सभी के लिए राइट हियर, मेरी तरफ से खास डेडिकेटेड है। और मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Well, that was Navtej Singh ki awaz mein. That is Bombay Rockers ki awaz mein. Ye gana right here on Mirchi from the movie Dhurandhar, the part 2. Very good morning and welcome back. Simply Afreen ka saath hai, writer on Mirchi Mornings. Aur dekhiye bhai, aisa mehsoos ho raha hai mujhe ki seedha utha ke na mujhe koi tandoor mein rakh diya ho. Especially aisa hota hai na ki aap kahin chuttiyon se lautte ho ye July August ke waqt par. कई सारे लोग हमारे कतर में ट्रैवल करते हैं, मोस्टली अपने होम टाउन करते हैं, भले वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह जगहें हो या फिर कहीं बाहर वेकेशंस पर जाते हैं. एंड व्हेन दे आर बैक ना, लगभग अगस्त के वक्त तक तो सारे लोग वापस आ ही जाते हैं, अगस्त एंड तक. और अभी भी मेरे ख्याल से वो लौटने का सिलसिला अब से मेरे ख्याल से शुरू होने वाला है. सो वेल, मैं भी कल रात को ही आई हूँ और बस ऐसा हुआ है कि बस मुझे फील हो रहा है कि भाई मैं तंदूर में आ गई हूँ. क्या गर्मी महसूस हो रही है, स्पेशली तब जब कोई फिनलैंड से आए. यस, मेरी छुट्टी आ रही है स्वीडन और फिनलैंड में. सो इट, यू कैन एक्चुअली इमेजिन कि आई वाज देयर राइट देयर इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, एब्सोल्युटली चिलिंग. और अब गर्मी कितनी है आंकड़ों में, ये अब हम अब देखते हैं. ठीक है, सो या
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान.
2: वेदर अपडेट.
0: वेल, वेदर ये कह रहा है आज का दैट मैक्सिमम टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा, मिनिमम 32. सो इट, यू कैन एक्चुअली इमेजिन कि आई वाज देयर राइट देयर इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, एब्सोल्युटली चिलिंग. और अब गर्मी कितनी है आंकड़ों में, ये अब हम अब देखते हैं. ठीक है, सो या
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान.
2: वेदर अपडेट.
0: वेल, वेदर

0: मीनवाइल चलिए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अमिताभ भट्टाचार्य की आवाज में वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स बाय द फेवरेट म्यूजिक कंपोजर दैट इज अमित त्रिवेदी की म्यूजिक कंपोजिशन लुटेरा मूवी से अनकही ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय आरएसएल ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813।

नीतू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकां लई भंग होगी।

0: की कुड़ी तो जाके चल के घूम फिर कर वापस आ गई है अपनी जगह पर। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफरीन का साथ है राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। बहुत दिनों के बाद यहाँ पर आप लोग एक साथ फिर से जुड़ी हूँ मैं। बड़ा ही जबरदस्त लग रहा है। और कतर में ना जब भी कहीं से जाकर आओ ना, सच कहती हूँ, एक अलग सा सुकून है यहाँ पर। द मोमेंट यू स्टेप ऑन हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बस वहीं पर ना दिल एकदम से लाइक एकदम से रेस्ट पर आ जाता है। भले ही हम वेकेशंस पर जाते हैं कि यार चलो रेस्ट हो जाएगा, अच्छा सा रिफ्रेशमेंट हो जाएगा, बट ना थोड़े दिन के बाद में मुझे तो बहुत याद आता है कतर। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि टेल मी? मतलब मैं तो अब 10 दिन के लिए कुछ तकरीबन गई थी और मुझे बस 1-8 दिन या 1 हफ्ते बाद हमेशा जब भी मैं जाती हूँ तो मुझे कतर याद आ ही जाता है। आपसे मुझे जानना है कि अगर जब आप यहाँ से कहीं वेकेशन पर जाते हैं, आप अपने घर जाते हो, ये घर छोड़कर, तो आपको कतर याद आता है? और आता है तो कितने दिन में आता है कि बस नहीं है 2 हफ्ते तो यार बस हम मज़े में रहते ही हैं? अगर स्पेशली होम टाउन है तो अपनों से मिल लिया, अच्छे अपने पसंद के खाने पीने खा लिए, लेकिन कुछ दिन के बाद तो आता होगा ना याद? बताइए ना मुझे। 5000-1896 इज माई नंबर। फॉर मी तो 1 हफ्ते में मुझे तो आना ही है वापस, ये हाल होता है मेरा। मीनवाइल अगले गाने की तरफ बढ़ते हुए, मैं यानी आफरीन, और अगला गाना गुरु की आवाज में राइटर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: What a beautiful song. Shruti Hassan ki awaaz mein ye gaana aapne suna right here on Mirchi. और ऑल द पेरेंट्स आउट देयर, मुझे सच सच बताओ भाई, कैसा लग रहा है आपको? मतलब भाई, बच्चों को एंटरटेन करना इतने वक्त तक आसान थोड़ी ना है. एंड मेरे ख्याल से अब तक एक महीना तो हो गया होगा बच्चों की छुट्टियां शुरू होकर, या फिर उससे थोड़े दिन ज्यादा. और इतने दिन से आप बखूबे बच्चों का एंटरटेनमेंट किए जा रहे हो. क्योंकि यार देखिए, मैं समझती हूँ ये बात, जब बच्चे ना स्कूल जाते हैं तकरीबन 6-8 घंटे के लिए, अच्छे खासे, उससे ज्यादा ही मेरे ख्याल से, ये दिन में बिजी रहते हैं और उसके बाद में थक कर भी आते हैं, एक शेड्यूल सा होता है. लेकिन जब वेकेशन होती है ना, तो बस दे आर ऑन देयर टोज, रादर दे कीप यू ऑन देयर टोज. और बस ऐसे में हमारे खतर में ना इस वक्त पर बहुत सारी चीजें होती है बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए. जैसे अभी अगर आप मॉल ऑफ कतर की तरफ जाएं, तो फिर वहां पर एक मजेदार सा शो चल रहा है, द जंगल इज कॉलिंग, स्टेप इनटू द वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर, वेयर वाइब्रेंट कैरेक्टर्स और स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस हो रहे हैं. और मॉल ऑफ कतर में तो हम जानते हैं ना, वो इस स्टेज है बीच में, और वहां पर मजेदार परफॉर्मेंसेस चलते रहते हैं. एंड स्पेशली अब ना बच्चों के एंटरटेनमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक्रोबैटिक परफॉर्मेंसेस, और थीम इज जंगल, ठीक है ना. तो ये इनटू द जंगल, ये शो जो चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ 1 अगस्त तक चलने वाला है. लेकिन मतलब समझ लीजिए, अगले 2-4 दिन तक ही ये रहने वाला है. तो अगर आपका इरादा है कि भाई अब तो शॉपिंग भी कर लेना है और थोड़ा सा बच्चे भी एंटरटेन हो जाए, देन मॉल ऑफ कतर इज द प्लेस यू कैन हेड टू. मैं हूं आफरीन, आपके साथ अगला गाना टाइगर श्रॉफ, ज़ारा खान एडवर्ड माया की आवाज है. और मिर्ची, इट्स हॉट.

0: अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना फ्रॉम द मूवी आवारा 2। यस, आवारा 2 की अगर मैं बातें करूँ तो भाई बहुत सारी करने के लिए है। क्योंकि वो डायलॉग तो आपको याद होगा ना कि अखा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ, मतलब जो इमरान हाशमी के फैंस हैं दे नो व्हाट दे आर वेटिंग फॉर, मतलब आवारा 2 इमरान हाशमी की ये मूवी। और जब भी इमरान हाशमी की कोई मूवी आती है ना, वी ऑल हैव विटनेस्ड कि जही भाई भाई भाई ऐसे ऐसे गाने होते हैं। एंड इमरान हाशमी और के का रिश्ता ना बहुत ही गहरा था, आई थिंक सो। हर एक इमरान हाशमी की मूवी में के गाने तो होने ही थे और सुपर डुपर हिट सारे हो जाते थे ये गाने। और जब बात आती है आवारा 2 की, आई फेल्ट जब मूवी आने ही वाली थी, वो ये सोच रही थी कि भाई अब के नहीं है तो ऑब्वियसली यार अरिजीत सिंह ही हैं जो बहुत ज़्यादा जस्टिस कर सकते हैं इस मूवी के गाने को। एंड देन अरिजीत सिंह ने कहा था कि हम तो गाने नहीं वाले अब मूवी में, सो ग्लैड, ऑनेस्टली प्लेजेंटली ग्लैड कि भाई इन्होंने ये पहले ही गा के रखा था एंड नाउ वी कैन हियर दिस सॉन्ग इन दिस मूवी आवारा 2। बहुत सी बातें कर ली अबाउट दिस मूवी, इफ यू आर ऑल्सो वेटिंग टू वॉच दिस मूवी टेल मी। तब तक के लिए तो फिलहाल अगला गाना सुनाने की मैं इंतजार में हूँ यहाँ पर। पर उससे पहले जरा वक्त मिला लेते हैं, मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 7:07 की तरफ।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: और 90s का गाना फ्रेश तड़के के साथ रायचूर और मिर्ची आंखों से तूने 2.0 वर्जन।

0: Mirchi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rabana. Burka, burka. La virpa la burka.
2: Mirchi, burka.
3: हेलो
4: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
3: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
4: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पूछा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
3: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
4: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
3: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
4: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घटो पहले भी बताओ ना मेरे को।
3: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
4: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
3: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
4: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
3: नहीं मैं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
4: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया फोन।
3: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
4: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
3: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
4: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहे हो यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो जो रेट वेट मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है। मैं आपको पहले आ रहा हूँ,
3: मैं बाद में मिलूंगा आपसे। यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
4: किसकी डेथ हो गई सर?
3: वो मेरे भाई की डेथ हो गई।
4: रुकिए आशीष भार्गव सर, आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स फार्म में आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
3: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसा हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रहे हो?
4: मैं कहाँ रहा हूँ,
3: सॉरी आप अभी कहाँ पर हो?
4: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
3: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, एक परेशान हूँ मैं।
4: आशीष, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
3: यार।
4: थैंक यू।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: Going home? Make it rewarding with Kalyan Jewelers.
7: Enjoy 0% making charges on select ornaments. Visit Kalyan Jewelers today. Conditions apply.
8: How is the Josh?
9: Hi sir.
8: How is the Josh?
9: Hi sir.
10: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
12: 89.6
13: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: देखो जिसने भी कहा है ना कि शॉपिंग एक थेरेपी होती है, बिल्कुल सही कहा है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफरीन का साथ है राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। अब देखिए भाई, शॉपिंग करने से इतना सुकून मिलता है ना। हाँ, थोड़े से जो है आपकी पॉकेट जल जाती है, लेकिन यार सही में दिल को बड़ी ठंडक मिलती है और बड़े मजा आता है। एंड शॉपिंग में समझो, अगर आप कपड़े लेने जाओ और घर कार लेकर आओ, तो भाई और क्या ही चाहिए। स्पेशली तब जब आप यहाँ पर समर्स में ना आउटडोर्स घूम नहीं सकते हो ना, तो बस इस तरह से समर शॉपिंग फेस्टिवल का मजा तो जरूर उठा सकते हो। वेल शॉपिंग फेस्टिवल ये 1st अगस्त से लेकर 31st अगस्त तक चलने वाला है। एक महीने का जबरदस्त ये जो है फेस्टिवल, जहां पर शॉपिंग और डाइनिंग एक्टिवेशन है। देखिए यहां पर रेसिडेंट्स और विजिटर्स देखिए लुक फॉरवर्ड टू एक्सक्लूसिव प्रमोशंस, सेट मेन्यूज, वैल्यू एडेड एक्सपीरियंस। मतलब पूरे कतर में हर जगह, भले आप खाने के लिए जाइए या शॉपिंग के लिए जाइए। अच्छा, मजे की बात तो ये भी है दैट यहां पर 4 मेजर रैफल ड्रॉज होने वाले हैं, विच इंक्लूड्स 5 कार्स। और इसमें आपको मौका मिलेगा ना भाई कि भाई कार भी जीत सकते हैं। देखिए ये जो पार्टिसिपेटिंग वेन्यूज है हाला समर शॉपिंग फेस्टिवल के, वो है प्लेस वेंडम, दोहा फेस्टिवल सिटी, मॉल ऑफ कतर, विलेज यू सिटी सेंटर, लैंडमार्क दोहा मॉल, वेस्ट वॉक, और ऐसे कई सारे मॉल्स हमारे कतर में। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चलो यार, बैग उठाओ और जाइए शॉपिंग को और फायदा करके आइए। मैं हूँ आफरीन आपके साथ राइटर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे.
2: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी.
3: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM, मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: वेल अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना राइट ऑन मिर्ची एंड इट्स टाइम टू प्ले आवर फेवरेट वाला गेम। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफरीन का साथ है। जब हमारा साथ आपके साथ है ना, तो भाई ड्राइव को एंटरटेनिंग रखना ये मेरी जिम्मेदारी है ना। बिल्कुल एंटरटेन होते हुए आपने जहाँ पर है पहुँचना है, आप अगर घर में हो तो एंटरटेनमेंट की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। और जब मैं ये गेम खेलती हूँ ना, तो बस बड़ा मजा आता है जब इतने सारे लोग जुड़ जाते हैं। लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट के बारे में बात कर रही हूँ, एक सीन सुना रही हूँ। और आज का जो सीन है ना, आवाज़ बहुत ही फेमिलियर है, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे 90s के हीरो है। हालांकि ये मूवीज जो है वो 2000 के एरा की है, लेकिन मूवी इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है। लेकिन ये दो जो आवाज है वो एक ही बार इस मूवी में ऐसे साथ में आई है, एंड ये दो आवाज बहुत ज्यादा फेमस है। कौन सी है, चलिए सुनते हैं। रेडियो सेट्स के वॉल्यूम करो हाई और ध्यान से सुनो।
0: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट। सीन टेस्ट।
2: एक लड़की जो छत से अपने पापा को ढकेल देती,
3: उसे क्या कहते हैं बताओ?
2: पुष्पा। पुष्पा।
1: ऑल राइट। कौन सी मूवी है ये? 5000-1896 इज माई नंबर। और जैसे मैंने बताया कि आपने आवाज तो पहचान ली है, एक तो है हमारे 90s के हीरो और एक है अभी के धुरंधर वाले हीरो। भाई बहुत ज्यादा ही बोल दिया क्या मैंने? चलिए 5000-1896 इज माई नंबर। बताइए कौन सी मूवी का ये सीन था। तब तक के लिए सचिन टंडन की आवाज में अगला गाना आपका इंतजार कर रहा है और मिर्ची इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: विशाल भारद्वाज, आप फिल्म डायरेक्ट भी करते हैं, आप म्यूजिक भी देते हैं और आप गाना भी गाते हैं। कई लोग इंडस्ट्री में आपसे काफी खफा होंगे, उनका निवाला जो छीन लेते हैं आप, नहीं?
2: हमेशा एक आयरनी होती है कि शूटिंग से पहले मुझे गाने पूरे करने का टाइम नहीं मिलता है, तो सारे गाने मुझे खुद करके बाद में वॉइसेस चेंज करता हूँ। ऑल द मेंबर ऑफ माय यू नो टीम जैसे कि नहीं ये गाना भी आप गाओ ये गाना भी, बड़ा एम्बेरेसिंग मुझे लगता है। और सिंगर्स थे वो सब, जब मैं उनसे पार्टी में मिलता हूँ तो सब मुझे बोलते हैं कि यार ये हद हो गई यार, तुम गाने भी, तुम सारे गाने शुरू कर दिए। और मुझे मालूम है कि पीछे लगता होगा गाया जाता नहीं है, सांस पूरी आती नहीं है, फिर भी गाने में लगा हुआ है।
1: भाई हम तो कहेंगे थैंक यू उन गानों को बनाने के लिए, म्यूजिक देने के लिए और गाना गाने के लिए। दैट वॉज विशाल भारद्वाज ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: अरे यार इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
4: क्योंकि मैंने रिचार्ज किया ओरेडो के योर स्पेशल ऑफर से।
3: योर स्पेशल ऑफर?
4: हाँ, ये रिचार्ज मेरे हाला नंबर के लिए स्पेशली बना हुआ ऑफर है, ज्यादा वैल्यू और वो बेनिफिट्स जो मुझे एक्चुअली चाहिए।
3: ये तो मेरे नॉर्मल रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
4: बिल्कुल, योर स्पेशल ऑफर मेरे लिए सबसे अच्छा रिचार्ज ऑप्शन है।
3: ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बना है खास आपके लिए। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
5: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
6: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार बार बार। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: Well, मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, कह सकते हैं कि बहुत दिन के बाद इनफैक्ट आई हूँ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरीन को, और सोच सकते हो ना कि आप भाई इतने दिन की छुट्टी के बाद में अगर मैं आई हूँ तो कितनी ज्यादा फ्रेश, बिल्कुल कह सकते हैं रिफ्रेश्ड एकदम नजर आ रही होंगी, नजर नहीं सुनाई दे रही होंगी, राइट। सो वेल, आफ्टरीन है आपके साथ सुपर सुपर एनर्जी मिशी मॉर्निंग्स पर, और गेम का यहाँ पर सिलसिला चल रहा था, सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा था, लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट हम यहाँ पर खेल रहे थे, सीन सुनाती और फिर सीन के बारे में भी बात करेंगे और आपके यहाँ पर जवाब भी सुनेंगे। सो हियर इट गोस, लाइट्स कैमरा सीन
1: टेस्ट। सीन टेस्ट।
2: एक लड़की जो छत से अपने पापा को ढकेल देती है, उसे क्या कहते हैं बताओ? पुष्पा। पुष्पा।
0: ऑल राइट, जैसे मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि ये जो तो आवाज़ है, आवाज़ तो बहुत पॉपुलर है और आप सोच भी रहे हो कि भाई हम तो जानते हैं ये आवाज़, लेकिन मूवी कौन सी है यार, ये समझ नहीं आ रहा है। बोले यहाँ पर काफ़ी सारे मैसेजेस आए हैं, शाहजी अब्दुल करीम का मैसेज है, अब्दुल रज़ाक का मैसेज है, और फिर यहाँ पर मोहम्मद यूसुफ खान का मैसेज है, एंड देन आई हैव समवन हु इज़ टेलिंग अस कि ये आंसर क्या है, कौन है हमारे साथ, चलिए सुनते हैं।
3: मोहम्मद अख्तर, द नेम ऑफ द मूवी इज आई बिलीव Kill Bill or something like this.
0: All right.
3: The protagonist are Govinda, Ranveer Kapoor, Ali Abbas Zafar, and Parinidhi Chopra. But I'm confused with the name of the movie.
0: बिल्कुल सही जवाब है आपका, इट इज किल बिल, ऑल्दो इट वाज अ सुपर डुपर फ्लॉप एट द बॉक्स ऑफिस, लेकिन यार इस मूवी का ये जो गाना है जो मैं अगला प्ले करने वाली हूँ, दैट हैज स्टेड, दैट हैज स्टेड विथ मी, एंड आई थिंक सो दैट हैज स्टेड विथ अ गुड म्यूजिक लवर, अरिजीत सिंह और निहिरा जोशी देश पांडे की आवाज में गाना। बहुत सारे मैसेजेस राइट नाउ भी मुझे आ भी रहे हैं, कमर का मैसेज आया है, फहमीदा फातिमा का मैसेज आया है, देन आई हैव नदीम का मैसेज आंसरिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, तो बड़ा बड़ा शुक्रिया है आपका। और बस अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, किल बिल मूवी से वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स, आफरीन के साथ बने रहेगा माइक से दिल तक, इट्स हॉट।

0: बोल दामिनी बोल। बिल्कुल मिर्च हेल्पलाइन का नंबर है।
1: वो ना वो पराठे गरम करते वक्त मैं कितना भी ध्यान रखूं वो जल ही जाते हैं और मेरी मम्मी इतना गुस्सा करती है, मैं क्या करूं?
0: क्या करूं का क्या मतलब है, जलने वाले तो जलेंगे, तू मम्मी को बोल के किचन में ना खड़ी रहे। सिंपल है।
2: खोपड़ी तोड़ दे।

0: अंजू राठौर की आवाज एंड अ क्यूट सॉन्ग राइट हियर ऑन मिर्ची. मैं हूँ आफरीन आपके साथ. और देखिए भाई, जिसने भी कहा है ना कि आपको ट्रैवल बहुत कुछ सिखाता है, बिल्कुल सही कहा है. और बस इसी चलते ना मैं हर साल ट्रैवल की स्टूडेंट बनने के लिए बिल्कुल तैयार रहती हूँ. और बस ऐसे ही मैं अभी अभी लौटी हूँ वेकेशन से. एंड इस बार मैंने विजिट किया है स्वीडन एंड फिनलैंड और एस्टोनिया. ठीक है, अब ये तीन कंट्रीज में से एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, एन इंटरेस्टिंग फैक्ट कह सकते हैं. जैसे स्वीडन में स्टॉकहोम जो शहर है, वहाँ पर जो मेट्रो लाइंस होती है, वहाँ की मेट्रो लाइंस, वो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट आर्ट गैलरी होती है. वेल यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेट्रो लाइंस. जैसे हमारे कतर में भी मेट्रो लाइंस है, वहाँ पर जो स्टेशन होता है ना, वहाँ इतनी खूबसूरत आर्ट्स होते हैं स्टेशन पे हर जगह. अब ये लगभग जो है 110 किलोमीटर्स का मेट्रो नेटवर्क है और 100 में से 90 से भी ज़्यादा स्टेशन पर ना आर्ट होते हैं. अब हर स्टेशन का एक थीम होता है, कहीं रेनबो थीम होता है, कहीं साइंस का होता है, कहीं फॉरेस्ट और एनवायरमेंट से जुड़ा होता है, कहीं वुमेन्स राइट का थीम होता है, और बहुत ही ज़बरदस्त थीम पर ना पूरा आर्ट वर्क होता है. अब इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि यहाँ पर लोग जो होते हैं, हमारे जैसे टूरिस्ट होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा मेट्रो से कहीं ना कहीं जाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं. ऐसे बहुत होते हैं मेरी तरह जो सिर्फ एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन हॉप करते हैं ये आर्ट वर्क देखने के लिए. एंड टॉकिंग अबाउट कतर का मेट्रो, जो अपने आप में इतना खूबसूरत, इतना मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसका, इतना ज़बरदस्त है. अब यहाँ पर भी अगर आप तो कभी ध्यान से देखेंगे तो इसका भी आर्किटेक्चर इज रियली ब्यूटीफुल. लेकिन एक मेट्रो स्टेशन अपने आप में एक आर्ट गैलरी बन जाए, ये कितना ज़बरदस्त थॉट है, राइट? मैं हूँ आफरीन और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रिवियाज लेकर आती हूँ, अब भले ही वो बॉलीवुड के हो या फिर ट्रैवल से जुड़े हुए हो. बस सुनते रहिएगा मुझे राइट ऑन मिर्ची. लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा वक्त मिला ले, मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है 8:05 की तरफ और आनंद राज आनंद की आवाज में अगला गाना आपका इंतजार कर रहा है. और मिर्ची इज हॉट.
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vjet vala burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Hello, Mr. Gotham.
1: कौन बोल रहा है?
2: सर मैं एक्चुअली आज सर है रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. मैं सो आप सुना है फिर वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है. मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं.
1: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं.
2: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू आजा स्नेक निकाल दे. सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में. नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
1: हाँ, सर, कुछ गा के सुनाएगा.
2: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
1: अरे काम करो अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ सुबह.
2: वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को.
1: कोंडा में कौन से गाने?
2: सर वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं. उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए. एक पेशकश कर रहा हूँ. तन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया. सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा.
1: सुन ले बात, मेरी बात सुन, पहले बात सुन.
2: हाँ सर.
1: और बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है ये बंद कर
2: रहा सर. बोल लिया.
1: हमारे यहाँ पे इस तरह के घर नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
2: जी सर.
1: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
3: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ. मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता. आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है. छोटा सा मजाक किया, मुर्गा बन गया आपका.

0: कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है। क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
1: तो इंतजार खत्म। RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
0: अभी कॉल करें 3100813।
2: यार बजट टाइट है, शॉपिंग कैसे करें?
1: बजट टाइट तो लुलू फैशन स्टोर चलो।
2: क्यों, वहाँ क्या मैजिक हो रहा है?
1: मैजिक नहीं, हाफ पे बैक।
2: ओहो, एक्सप्लेन करो जरा।
1: सिंपल रेडीमेड गार्मेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार्स, फुटवेयर, लेडीज बैग्स और बेबी एक्सेसरीज पे हाफ पे बैक।
2: मतलब 200 की शॉपिंग पे 100 वापस।
1: बिल्कुल, और वाउचर रिडीम भी इन्हीं कैटेगरीज में कर सकते हो।
0: ये हुई ना स्मार्ट शॉपिंग। लुलू फैशन स्टोर, हाफ पे बैक, शॉपिंग का स्मार्ट तरीका। स्पेंड QAR 200 एंड गेट QAR 100 फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली। लुलू फैशन स्टोर, लिमिटेड पीरियड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लुलू, व्हेन द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
3: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
0: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स।
4: जबरदस्त ट्रैक्स
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन।
5: 89.6
6: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

देखो, कोई शहर में कोई इंसान नया नया ही आया हो, ये आपको कैसा पता लगता है? ये मैं आपको बताती हूँ, वो ऐसे कि जब कोई इंसान कुछ खरीदने से पहले उसे अपने होम टाउन, होम कंट्री के करेंसी में हमेशा कन्वर्ट करके देखता है कि हाँ ये इतने का है तो ये फिर ठीक है, या फिर ये इतना महंगा है या इतना सस्ता है, समझ जाइए ये वो शहर में नया बंदा है। ऐसी कुछ हाल था मेरा पिछले कुछ दिनों में, जहां पर मैं कुछ नए कंट्रीज गई थी। मैं घूमने गई थी यूरोप में, स्वीडन, फिनलैंड एंड एस्टोनिया, और वहां पर हर चीज खरीदने से पहले ना मैं इंडियन रुपीस में नहीं, अब मैं ना कतरी रुपीस में कन्वर्ट करके देख रही थी। ऑन दिस नोट, जहां पर हम एक्सचेंज रेट्स की इतनी बातें कर ही रहे हैं, तो चलिए आज के एक्सचेंज रेट्स पर भी नजर डाल दें। तो आज का एक्सचेंज रेट ये कहता है दैट 1 का 3 रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीस 26.30। ओह माय गॉड, जाने से पहले 10 दिन पहले तो कुछ हाल अलग था। वेल, पाकिस्तानी रुपीस की बात करें तो 76.36 पर है, वहीं 1 का 3 रियाल के बदले। बांग्लादेशी टाका आपको मिल रहे हैं 33.98, 1 का 3 रियाल के बदले आपको मिल रहे हैं श्रीलंकन रुपीस, दैट इज 92.15। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, 1 का 3 रियाल के बदले आपको मिल रहे हैं नेपाली रुपीस, वो है 42.08। ये थे आज के एक्सचेंज रेट, घर में जो पैसे ढेर सारी खुशियां, और खुशियों का नंबर 1 फॉर्मूला 1 एंड ओनली 89.6 FM पर माइक से दिल तक आफरीन के साथ। इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट।
0: सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: वेल, प्रदीप सिंह और नकाश अजीज की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, अ क्यूटी क्यूटी गाना। और आगे है आपकी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफरीन का साथ है राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और देखिए भाई, वक्त हो चला है कि हम वो गेम खेलें जिसे मैं कहती हूँ पहचान कौन। देखिए, एक ऐसी आवाज़ सुनाने वाली हूँ मैं आपको, सेलिब्रिटी की आवाज़ है, आपको गेस करनी है कि ये आवाज़ किसकी है। दैट्स इट, 5000 1896 इज माई नंबर। और फिर आवाज़ कुछ ऐसी है, रेडियो सेट्स के वॉल्यूम करो हाई और ध्यान से सुनो।
2: एंड दैट इज व्हाई अ फिल्म व्हिच वुमेन लाइक will always be a success and women will like the sensitive things. I wonder how many women liked RRR. It would be an interesting statistic to find out about. But men have this luxury of indulging.
1: राइट, ये जो बात है बिल्कुल सही कही हुई है कि जो मूवीज एक औरत को पसंद

है ना, वो जेन्युइनली बहुत अच्छी मूवी है, क्योंकि औरतों को जनरली सेंसिटिव चीजें बहुत पसंद आती हैं. एंड किसकी आवाज है पहले वो बताइए मुझे, 5000186. और ये जो ख्याल है इनका, इससे मैं 100% बिल्कुल सहमत हूँ कि भाई आवाज तो किसकी है. ये मैसेजेस बहुत आ रहे हैं, लेकिन ये जो ख्याल है ना, ये बहुत ही ज्यादा टचिंग ख्याल है कि भाई जो सेंसिटिव मूवीज होती है ना, वो औरतों को बहुत पसंद आती है. कितने लोगों को, मुझे सच में बताओ यार, ऑल द लेडीज आउट देयर, आपको एनिमल मूवी पसंद आई है? बिकॉज आई एम समवन हु रियली डिड नॉट लाइक दिस मूवी. चलिए इस बारे में तो बाद में बात करें. लेकिन अगला गाना जो मैं प्ले कर रही हूँ ना अरिजीत सिंह की आवाज में, जिस मूवी से है, वो मूवी मुझे बहुत पसंद आई है, एंड आई एम श्योर ऑल द लेडीज आउट देयर आल्सो लाइक दिस मूवी. लापता लेडीज से राइटर रणवीर जी, वेटिंग फॉर योर आंसर्स. माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा. इट्स हॉट.

0: Hollywood, Bollywood, Bold Eye.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: प्रियंका चोपड़ा, आपने विशाल भारद्वाज के साथ दो फिल्में की हैं, देयर इज सात खून माफ, देयर इज कमीने। आप दोनों की जुगलबंदी को देख के लगता है कि बहुत मजे आते होंगे सेट पे।
3: हाँ, लगता ही है। ही इज द काइंड ऑफ डायरेक्टर, एज एन एक्टर यू हैव टू रियली ट्रस्ट हिम, क्योंकि ही इज हिज आइडियाज कम फ्रॉम वेयर यू नेवर अंडरस्टैंड, एंड इफ यू स्टार्ट जस्टिफाइंग इट, जैसे अगर उन्होंने कुछ बोल दिया जैसे कि यू नो तुम यहाँ पे सीढ़ियों से आ रही हो, अगर मैं सोचने लगी कि मैं सीढ़ियों से क्यों आऊंगी तो फिर तो मतलब आपकी कभी नहीं बनेगी, बट यू हैव टू ट्रस्ट हिम।
2: ये थी प्रियंका चोपड़ा टॉकिंग अबाउट विशाल भारद्वाज ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्ड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
5: नहीं! बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
6: अरे, पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
7: कैसे रुक सकता है?
8: Qatar का number one radio station.
9: 89.6 FM, Mirchi 1.
10: Mirchi 1.
9: It's hot.

0: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: Well, Anuradha Podwal ji ki awaaz mein ye gaana right here aur saath dete hue Udit Narayan. What a beautiful song and a beautiful start to the day. Agar aapki shuruaat abhi abhi hui hai, hum to bhai yahan par pichle 3 ghante se baithe hain. और यहाँ पर 3 घंटे से बहुत अच्छी पंचायत लगी हुई है, बातें हो रही हैं खतर के बारे में, बातें हो रही हैं क्या आई हैव मिस्ड आउट ऑन, यही मैं देख रही हूँ सुबह से, क्योंकि 10 दिन के बाद से तो मैं यहाँ पर आई हूँ और उसके बाद मैं फिर यहाँ पर गेम के जरिए हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वेलकम बैक ये सारी चीज़ें, यहाँ पर काफ़ी सारे मैसेजेस आए हैं सुबह से, बहुत बहुत शुक्रिया. वेल, गेम कौन सा चल रहा था, चलिए उस पर आते हैं, उसकी बातें करते हैं. पहले पहचान कौन, एक आवाज़ सुनाई थी मैंने, आपने गेस करना था ये आवाज है किसकी, और ये आवाज तो चलिए आप गेस कर लीजिए, लेकिन ये जो आवाज में जो ये मैसेज दे रहे हैं ना, जो बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा है और वो सुन लेते हैं. चलिए रेडियो सच के वॉल्यूम करो हाय और ध्यान से सुनो.
2: एंड दैट इज व्हाई अ फिल्म व्हिच वुमेन लाइक विल ऑलवेज बी अ सक्सेस एंड वुमेन विल लाइक द सेंसिटिव थिंग्स. आई वंडर हाउ मेनी वुमेन लाइक आरआरआर. इट वुड बी एन इंटरेस्टिंग statistic to find out about. But men have this luxury of.
1: All right. किसकी आवाज़ है ये, बहुत सारे लोगों के यहाँ पर मैसेजेस आए हैं. फहमीदा फातिमा का यहाँ मैसेज है, शाजी अब्दुल करीम का यहाँ मैसेज है, देन आई हैव विवेक मैसेजिंग मी सेइंग इट्स बॉबी देओल. नहीं यार विवेक, दिस इज़ नॉट बॉबी देओल. कमर का मैसेज है, मोहम्मद यूसुफ खान का मैसेज है, देन आई हैव हरपाल संधु फ्रॉम दुखान, और ये अपना नाम भी लिखा करो भाई, हमदान का मैसेज है, उमेर का मैसेज है, एंड सो मेनी अब्दुल रजाक सेइंग दैट भाई ये जो आवाज़ है ये है नसीर साहब की आवाज़, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर बॉलीवुड कैन एवर हैव. और हाल ही में इनकी जो मूवी आई थी मैं वापस आऊँगा, उसके बारे में तो मैंने इतनी बातें की थी, मैंने ये मूवी थिएटर में जाके देखी थी, एंड व्हाट अ फिनोमिनल एक्टर ही इज, एंड ही प्रूव्स दैट इन एवरी मूवी ऑफ हिज. वेल, नसीर साहब की आवाज़ में ये जो मैसेज था ना कि भाई ये जो आरआरआर टाइप मूवीज़ जो होती है ये कितने लेडीज़ को पसंद आती होगी बताइए मुझे. और ऐसी बॉलीवुड की अगर ऐसी एक मूवी बात करें तो एनिमल इज ऑल्सो वन such kind of movie which I don't think so many ladies out there has liked it. औरतों को जो movie पसंद आती है ना वो genuinely बहुत अच्छी होती है, बहुत sensitive होती है. क्या आप भी इससे सहमत रखते हो? मैं तो रखती हूँ भाई. आयश किंग और सचिन जिगर की आवाज में ये अगला गाना आपको सुना रही हूँ. What a coincidence! Movie का नाम है स्त्री. Writer on Mirchi, it's hot mic से दिल तक आप श्रीन के साथ.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: या मिर्ची हेल्पलाइन, बताओ क्या प्रॉब्लम है?
0: जब भी मैं मॉल में शॉपिंग करने जाता हूँ, एक चीज लेनी होती है, पांच लेके आ जाता हूँ, क्या करूँ?
1: ये तो गलत है, अगली बार से एक ही लाना, क्योंकि पांच लेकर पकड़े जाओगे तो मॉल वाले चोर समझकर मारेंगे।

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: वेल, मूवी का नाम है टॉक्सिक। आई मीन रियली, बस कियारा आडवाणी की ये नई मूवी जो है, जिसमें इनके साथ में एक और एक है, आई थिंक सो ही इज़ यश। मैंने इनकी कोई मूवी पहले देखी नहीं है, पहली बार अगर इनको देखा है तो यही गाने में देखा है। एंड यस, मूवी का नाम जैसे आपने सुन लिया है टॉक्सिक है, तो आई एम श्योर इट वुड बी फिल्ड विद वायलेंस। वेल, मैं हूँ आफरीन आपके साथ। थोड़ी ही देर में कतर की बातें लेकर आऊँगी, लेकिन उससे पहले अगला गाना आपको सुनाना चाहूँगी, मधुबंती बागची और जैस्मिन सल्लस की आवाज़ में धुरंधर का ये गाना और मिर्ची घड़ी का इशारा सुबह के 9:05 की तरफ।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

अरिजीत सिंह और अमित मिश्रा की आवाज में ये गाना फ्रॉम द मूवी जगह जहां से गलती से मिस्टेक और देखो सोचो अगर अभी से तैयारी ये शुरू हो रही है तो क्या जबरदस्त इवेंट होने वाला है जो 6 महीने बाद है अब से। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स और मैं बात कर रही हूँ कतर का वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड इवेंट्स फेस्टिवल, आई कुड से दैट इज अ कतर इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल जो हाल ही में हुआ था, एक्चुअली हाल ही में ही कह सकते हैं, कुछ महीने पहले हुआ था। और ये जो हुआ था ना, ये 974 स्टेडियम के बाहर की तरफ वहाँ पर हुआ था। एंड नाउ एवरी ईयर के साथ साथ ना ये इसका जो स्केल है वो बढ़ते जा रहा है। वैसे तो ये जो इवेंट है, जो फेस्टिवल है, ये होने वाला है जनवरी में, 13 से 23 जनवरी तक है ये। लेकिन इसके जो रजिस्ट्रेशन है कियोस्क के, फूड कियोस्क वगैरह के, फूड वेंडर्स के लिए, वो अभी से खुल गए हैं। सो एनी रेस्टोरेंट ओनर्स और एनीवन हु वांट टू पुट द कियोस्क देयर और सुन रहे हैं अब मुझे, सो दिस इज योर चांस, फटाफट से इसके जो रजिस्ट्रेशन है, वेंडर रजिस्ट्रेशन है, ये आप कर दीजिए ताकि आपको आपकी जगह मिल जाए। क्योंकि लोग जानते हैं भाई, यहाँ पर कतर के सारे लोग आने ही आने हैं। अब भले वो फूडी हो नहीं हो, बस वो एक जो माहौल होता है ना फूड फेस्टिवल का, बहुत मजे का होता है। और काफी सारी चीजें ना वहां पर नई नई क्विजींस होते हैं या कोई एक नया वायरल आइटम हो जाता है वो टेस्ट करने मिलता है वहां पर, है ना। वेल टॉकिंग अबाउट फूड, व्हिच इज दैट वन फूड आइटम व्हिच यू हैड प्रीवियसली लाइक लास्ट ईयर या उसके प्रीवियस सीजंस में ऑफ फूड फेस्टिवल, जो आपको अब तक याद है कि भाई अरे यार ये हमने खाया था और क्या मजे का था, वो क्या आइटम है। इफ आई रिमेंबर लास्ट फूड फेस्टिवल में देर वॉज दिस कुकी, दिस वॉज लाइक अ सॉफ्ट डो कुकी और समथिंग, जो बहुत ही ज़्यादा वायरल भी हुई थी और बहुत ज़्यादा यमी भी थी। आपकी ज़रा आइटम मुझे बता दीजिए कि फूड फेस्टिवल का वो कौन सा एक आइटम था जिसका टेस्ट अभी तक आपके मुँह में है। माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा, शिल्पा राव और विशाल ददलानी की आवाज़ में ये गाना आपका इंतजार कर रहा है ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burka, burka. La
1: vieva la burka. Mirci, burka. Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello, Benji.
1: हाँ जी.
2: ये एक सेकंड, एक सेकंड. ये बहन जी, हम आपके पड़ोस में रहते हैं. ये मेरा एक्चुअली बच्चा बहुत रो रहा है और मेरी वाइफ का फोन लग नहीं रहा है. वो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है. अगर
1: आप... आपके घर में कोई नहीं है क्या?
2: नहीं, वाइफ है, वो गई हुई है कहीं. तो आप थोड़ा सा, आपको अगर कुछ मालूम हो तो. एक सेकंड बेटे, चुप.
1: आप अपनी वाइफ को फोन करिए ना, उन्हें बुलवाइए जल्दी.
2: नहीं नहीं, मैं उनको ही फोन कर रहा हूँ. एक सेकंड. आली है मामा आएंगी, मामा आएंगी. एक सेकंड बहन जी, आप होल्ड करेंगी? एक सेकंड सर. आएंगी मामा, आएंगी, चीजी लाएंगी बेटे, चीजी लाएंगी. नहीं, चुप हो रहा. आई एम सो सॉरी, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं ऐसे.
1: नहीं, इसमें डायपर पहना है तो चेक करिए, गीला तो नहीं है.
2: एक सेकंड, इधर आओ. हाँ, इधर आओ. देखो मामा आ गई, चीजी लाई. हाँ, डायपर गीला है बहन जी इसका,
1: उतार लीजिए.
2: एक सेकंड रुकिए. ये इसके गले में अटक रहा है डायपर. एक सेकंड,
1: शायद आप बेब उतार रहे हैं उसका.
2: अच्छा, ये बेब है. एक सेकंड,
1: देखिए सुसु करा होगा उसने. देखिए,
2: हाँ, सुसु ही करा. चुप,
1: उतार दीजिए.
2: एक सेकंड. उतार दिया. मैं जी, मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा कह देंगे, मैं स्पीकर फोन पे लगा देता हूँ, शायद आपकी आवाज से समझ आए जरा. देखो आंटी कर रही है. क्लैपिंग करो.
1: चुप हो जाओ, पेट दर्द वगैरह ना हो, आप इसको डॉक्टर के पास लेकर जाइए.
2: हाँ, मुझे भी वो याद आ रहा है. नहीं बहन जी, आप सही कह रही हैं. रात को ना इसने वो मुर्गा खा लिया था, जिससे पेट में दर्द हो जाता है और थोड़े बहुत कान खराब हो जाते हैं. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने आपका नंबर डायल किया.
1: और मैं पागल हूँ. ओह नो.
2: अब जरा मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए एक बार.
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Going home? Make it rewarding with Kalyan Jewelers.
1: Enjoy 0% making charges on select ornaments. Visit Kalyan Jewelers today. Conditions apply.
2: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
3: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
4: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
5: कम है के?
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

Well, अगर आपके घर में या आपके जान पहचान में 12 से 18 साल का कोई टीनेजर है तो आज की जो इन्फॉर्मेशन है ये एक अनाउंसमेंट नहीं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी जैसी नजर आएगी अगर वो मेडिकल फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो। वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और कतर के PHCC के समर प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन जो है वो खुल चुकी है। 12 से 18 साल के स्टूडेंट्स, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट के हो, सिटीजन्स हो या रेसिडेंट्स हो, सारे अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, ये कोई क्लासरूम लेक्चर नहीं है, दिस इज रियल हेल्थ सेंटर्स के अंदर प्रैक्टिकल एक्सपोजर। वेल, स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और हेल्थ केयर टीम्स को वर्क एनवायरनमेंट को देखेंगे, हेल्थ सेक्टर को क्लोज अप बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे और कंप्लीशन के बाद ट्रेनिंग आवर्स के साथ सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। देखिए, प्रोग्राम चलेगा 3 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक, हर मंडे, ट्यूजडे और वेनसडे, मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट के ऑप्शन के साथ है। सो आप सिलेक्ट कर सकते हो, बट मेनली इंपॉर्टेंट ये है कि इसका जो PHCC का ऑफिशियल पेज है, यहाँ पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो अगर ऐसा कोई आपका बेटा है, बेटी है या फिर कोई जानने वाला है जो फ्यूचर में डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, लैब साइंटिस्ट या हेल्थ केयर मैनेजमेंट में ही क्यों ना जाना चाहता हो, सो दिस समर वेकेशन बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जो वो बिल्कुल ग्रैब कर सकते हैं। मैं हूँ आफरीन आपके साथ, माइक से दिल तक, राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: She can already read what's on your mind. She knows what you are thinking. Coming soon. Stay tuned. Stay tuned.
1: यार, बजट टाइट है, शॉपिंग कैसे करें?
2: बजट टाइट तो लुलू फैशन स्टोर चलो।
1: क्यों? वहाँ क्या मैजिक हो रहा है?
2: मैजिक नहीं, हाफ पे बैक।
1: ओहो, एक्सप्लेन करो जरा।
2: सिंपल रेडीमेड गार्मेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग्स और बेबी एक्सेसरीज पे हाफ पे बैक।
1: ओह, मतलब 200 की शॉपिंग पे 100 वापस?
2: बिल्कुल, और वाउचर रिडीम भी इन्हीं कैटेगरीज में कर सकते हो।
3: ये हुई ना स्मार्ट शॉपिंग, लुलू फैशन स्टोर, हाफ पे बैक, शॉपिंग का स्मार्ट तरीका। स्पेंड QAR 200 एंड गेट QAR 100 फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली। लुलू फैशन स्टोर, लिमिटेड पीरियड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लुलू, व्हेन द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
4: दोस्ती का गुस्सा ले मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
5: भाई साहब, सॉरी एंड थैंक यू। हमें दोस्ती नहीं, एंटरटेनमेंट चाहिए।
6: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
7: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM, मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: जिनेली एंड रितेश, आप दोनों का तो झगड़ा होता ही नहीं होगा। जब झगड़ा ही नहीं होता, रितेश देशमुख, आपको तो सॉरी बोलना ही नहीं पड़ता होगा।
3: सॉरी बोलना पड़ता है बिना झगड़ा किए।
4: अलार्म लगा है। ओह गॉड, हेलो जिनेली, सॉरी यार, टाइम हो गया। सॉरी
3: नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। सॉरी बोलने का रोज एक टाइम होता है।
2: इन दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। ये थे रितेश एंड जिनेलिया देशमुख ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोलडाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोलडाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: Why go outside to see a doctor when healthcare can come to you?
6: With KIMS

0: पर दीदी आर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट
1: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 89.6 89.6 FM मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: शायद इसलिए कहा जाता है कि सफर इंसान को बहुत कुछ सिखा जाता है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टर इन को राइट रोड मिर्ची। और देखिए, अभी अभी ट्रैवल करके आई हूँ, और जब भी ट्रैवल करके आता है ना कहीं ना कहीं से कोई, स्पेशली कोई नई जगह से, कोई नई शहर से, तो ना आप कुछ बदले हुए से होते हो ना, आपका नज़रिया बदल जाता है, बहुत कुछ सीखने मिलता है, और एक छोटी सी दुनिया जो आपकी होती है जहाँ पर आप रहते हो, आपको फिर महसूस होता है कि दुनिया कितनी बड़ी है, लोग कितने किस्म के हैं, कल्चर्स कितने सारे हैं, और कितना कुछ सीखने मिलता है। अभी अभी इनफैक्ट कल रात को ही मैं इनफैक्ट लौटी हूँ सफ़र से, और इसी बात पर मैंने सोचा कि चलिए आज की शायरी सफ़र के नाम।
1: आफरीन की डायरी से शायरी।
0: तो अर्ज किया है,

मैं सफर में था तो रास्तों ने बहुत कुछ सिखाया। मैं सफर में था तो रास्तों ने बहुत कुछ सिखाया। घर लौटकर समझा, बदला शहर नहीं, बदल मैं गया था। शायद इसलिए कहते हैं कि हम अक्सर बुक करते वक्त डेस्टिनेशन देखते हैं, लेकिन जब वापस लौटते हैं ना, तो याद वो जगह नहीं होती है, एयरपोर्ट्स नहीं रहते, याद वो लोग रहते हैं, वो रास्ते होते हैं, वो छोटी छोटी कॉन्वर्सेशंस होती हैं शायद वो लोगों के साथ में, वो लोकल्स के साथ में। और कभी कभी ना पासपोर्ट पर लगने वाले स्टैम्प से ज़्यादा दिल पर लगने वाली यादें हमें अमीर बना देते हैं। मैं हूँ आफशीन, आपके साथ माइक से दिल तक, राइट अराउंड विद यू।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: वेल देखो, हैंगओवर मेरा जो है वो इतना जल्दी उतरने से रहा। और होना भी ऐसे ही चाहिए, राइट? कि भाई आप कहीं घूमने फिरने जाए तो उसका जो इफेक्ट है, उसका आफ्टर इफेक्ट कुछ महीने तक तो रहे, तो ही उसका फायदा है इतना जाने का। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को। वैसे वेलकम तो कर रही हूँ, लेकिन टाटा बाय बाय कहने के लिए कर रही हूँ। और यस, बहुत दिनों के बाद में आई वॉज लाइव ऑन एयर और बहुत ही मजा आया। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारे मैसेजेस आए यहाँ पर सेइंग वेलकम बैक आफ्टरनून। और जिस तरह से आप इस तरह मैसेज करते हो ना, तो बस मैं भागी दौड़ी कहीं से भी हूँ, मैं आ जाऊँ इस मोमेंट के लिए, इस ये चार घंटे, इस पल के लिए। वेल, 6 to 10 मेरा शो रहता है मिर्ची मॉर्निंग्स पर। कतर की बातें होती हैं, दुनिया में क्या चल रहा है ये बातें होती हैं, और यस, बॉलीवुड की बातों के बगैर कहाँ हमारा शो कंप्लीट होता है, राइट? तो बस अपना ख्याल रखिएगा, हफ्ते के बीचों बीच है हम, कल वेडनेसडे, थर्सडे, फिर क्या यार, वीकेंड यू चट चटपट गुजर जाएगा, वीक गुजर जाएगा और हमारा वीकेंड आ जाएगा। बहुत सी बातें करेंगे कि वीकेंड पर क्या करा जा सकता है कल। सो यू गॉट टू स्टे ट्यून, यानी माइक से दिल तक आफ्टरनून के साथ। कल मिलेंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, सायोनारा। सुनते रहेगा मिर्ची।

0: जी बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
1: मैं जब भी आटा गूंथती हूँ तो आटा मेरे हाथ में चिपक जाता है, क्या करूँ?
0: हाथ में चिपक जाता है? सिंपल तो है, क्या क्या करूँ? पैर से आटा गूंथ, हाथ में नहीं चिपकेगा।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में बज रहे हैं 10। आप सुन रहे हैं मिर्ची वन कतर।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो मिर्ची Trending. हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म रामायण की बात करूंगी, क्योंकि इसका ट्रेलर हो चुका है पोस्टपोन. सो नमित मल्होत्रा प्रोडक्शंस की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है दैट सोनी पिक्चर्स हैज कम ऑन बोर्ड फॉर ग्लोबल रिलीज ऑफ द मूवी आउटसाइड इंडिया, एंड इसी की वजह से इसके ट्रेलर को अभी के लिए पोस्टपोन किया गया है. बाकी नितेश तिवारी डायरेक्टोरियल इस फिल्म में, रणबीर कपूर, साई पल्लवी, सनी देओल, यश एंड रवि दुबे पिवटल रोल्स में नजर आएंगे, जिसका फर्स्ट पार्ट इज सेट टू रिलीज ऑन दिवाली 2026. बाकी की रीड्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी. सनी देओल की अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म बटवारा 1947 को CBFC ने ए सर्टिफिकेट के साथ पास कर दिया है. ये पहली बार हुआ है जब सनी देओल की कोई फिल्म अडल्ट्स ओनली रेटिंग के साथ पास की गई है. बाकी द मूवी सेट टू रिलीज ऑन द 14th of August, जो 2 घंटे 25 मिनट और 34 सेकंड की होने वाली है, यानी कि 145.34 मिनट्स लॉन्ग. आहान शेट्टी और शर्वरी वाघ का कॉम्बिनेशन, भाई आई एम क्वाइट स्केप्टिकल अबाउट इट, क्योंकि मुझे तो आहान शेट्टी की एक्टिंग कुछ खास पसंद नहीं आई थी इन बॉर्डर 2. ऑल दो इन दोनों एक्टर्स की अपकमिंग फिल्म, जिसका नाम अभी डिसाइडेड नहीं है, उसको डायरेक्ट कर रहे हैं अली अब्बास जफर, और इस फिल्म को उसका रिलीज डेट मिल चुका है, विच इज 24th of March नेक्स्ट ईयर. इट इज गोइंग टू बी अ रोमांटिक एक्शन ड्रामा, जिसमें इन दोनों एक्टर्स के अलावा बॉबी देओल और ऐश्वरी ठाकरे भी नजर आएंगी. वेल, अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही. मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ. स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट. Thank you.

0: इस गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सैयद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए वे जुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची
2: हेलो।
3: हाय शिवानी।
2: हाय।
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये?
2: समाचार
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा।
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा सा देख लूंगा।
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे। वन सेकेंड, चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए है, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, अपने सिर पे करवा ले जाके उसको, रोका हुआ है।
3: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
3: ये सिर्फ 3
2: करता।
3: अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
2: अपने सिर पे करवा ले
3: शिवानी।
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन करना, शिवानी मेरी बात सुनो,
2: नहीं नहीं
3: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शाला वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
2: कुकड़ुकु
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
5: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
6: दोनों मिलेगा, मिलेगा।
1: कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन,
7: 89.6
8: FM, मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: लो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मैं तो मिर्ची फिल्म जी गेम खेलने की बात कर रही थी। बाबू मोशाय हेलो जी हाय। सो द ड्रिल इज कि आपको इस गेम का हिस्सा बनने के लिए मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल मिर्ची श्रुति के डीएम में जाके अपना नंबर भेजना होता है, फिर मैं आपको कॉल करती हूँ एंड वी स्टार्ट विद द गेम। तो आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे है संदीप शुक्ला जी, हु इज कनेक्टेड विद मी फ्रॉम हैदराबाद। हेलो सर, कैसे हैं आप? तैयार हैं आज का गेम खेलने के लिए?
3: बिल्कुल श्योर।
0: ओके, गोविंदा की फिल्म जिसमें नंदू सबका बंधु होता है।
3: राजा बाबू।
0: क्या बात है, राजा बाबू में गोविंदा को किससे प्यार होता है?
3: करिश्मा कपूर।
0: करिश्मा कपूर की फिल्म जिसमें उनके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है।
3: अच्छा, बीवी नंबर वन।
0: यस जी, बीवी नंबर वन में उनके हस्बैंड कौन है?
3: सलमान खान। सलमान खान।
0: सलमान खान की फिल्म जिसमें उनका पुनर्जन्म होता है।
3: और करण अर्जुन। कितना आसान था।
0: करण अर्जुन में उनके भाई कौन है?
3: शाहरुख खान।
0: शाहरुख खान एक डांस ग्रुप के डायरेक्टर किस फिल्म में बने हैं?
3: दिल तो पागल है।
0: क्या बात है, दिल तो पागल है मैं चाक धूम धूम कौन करता है?
3: उनके साथ माधुरी दीक्षित।
0: माधुरी दीक्षित की फिल्म जिसमें वो चंद्रमुखी बनी है।
3: देवदास।
0: देवदास में देव के बचपन का प्यार कौन है?
3: पारो। ऐश्वर्या।
0: यस, ऐश्वर्या राय एक अट्रैक्टिव चोर किस फिल्म में बनी है?
3: धूम टू।
0: यस, धूम टू में एसीपी कौन है?
3: अपना अपना ये अभिषेक।
0: अभिषेक बच्चन की फिल्म जिसका नाम एक भगवान की आरती के नाम पे है।
3: ओम जय जगदीश।
0: ओहो, क्या बात है, मुझे लगा था यहाँ तो अटकेंगे आप, बट कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ओम जय जगदीश में सबसे बड़े भाई ओम कौन है?
3: अनिल कपूर।
0: अनिल कपूर की फिल्म जो कम्प्लीटली क्रूज पे शूट की गई है।
3: अरे दिल धड़कने दो।
0: दिल धड़कने दो में प्रियंका चोपड़ा के भाई कौन है?
3: रणवीर सिंह।
0: रणवीर सिंह लियारी के बादशाह किस फिल्म में बनते हैं?
3: धुरंधर।
0: धुरंधर में एसपी चौधरी कौन है?
3: संजय दत्त।
0: संजय दत्त किस फिल्म में अपने पापा को दिखाने के लिए फेक डॉक्टर बनते हैं?
3: मुन्ना भाई।
0: यस, मुन्ना भाई में सर्किट कौन है?
3: अरशद वारसी।
0: अरशद वारसी जर्नलिस्ट किस फिल्म में बनते हैं? चलिए कोई बात नहीं, बट इस गेम को इस लेवल तक जो पहुंचाया आपने उसके लिए ये टैग तो जरूर बनता है सर।
1: मिर्ची फिल्म जी।
0: तो बाबू मोशाय संदीप जी जिस लेवल पे अटके अगर उसके आगे का गेम खेलना है देन यू ऑलरेडी नो द ड्रिल। मिर्ची श्रुति के डीएम पे अपना नंबर भेजिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: context.
1: It's hot. She can already read what's on your mind. She knows what you are thinking. Coming soon. Stay tuned.
2: Stay tuned.
3: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
4: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: खेलो मगर प्यार से। श्रुति
1: श्रुति मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अपने अंदर के फिल्मी कीड़े को जगाने के लिए मिर्ची फिल्मची गेम खेलने की बात कर रही हूँ। बाबू मोशाय हेलो जी हाय। तो इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी टेल यू, आज इस गेम की शुरुआत हमने ऑलरेडी कर दी है और संदीप जी हैदराबाद से हमारे साथ कनेक्टेड थे, बट ही गॉट स्टक एट अ पॉइंट और उसके आगे का गेम खेलने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं शिवांगी जी हु इज कनेक्टेड फ्रॉम लखनऊ विद अस। सो शैल वी कंटिन्यू द गेम विद यू?
2: लवली, आई वुड लव टू।
0: ऑल राइट, अरशद वारसी जर्नलिस्ट किस फिल्म में बनते हैं?
2: काबुल एक्सप्रेस।
0: यस इट इज। काबुल एक्सप्रेस में उनके को वर्कर कौन है?
2: जॉन अब्राहम।
0: जॉन अब्राहम फोटोग्राफर किस फिल्म में बनते हैं?
2: गरम मसाला।
0: गरम मसाला में मैम्बो कौन है?
2: परेश रावल।
0: परेश रावल स्टार गराज के मालिक किस फिल्म में है?
2: हेरा फेरी।
0: यस इट इज। हेरा फेरी में लड़की का चक्कर किसका होता है?
2: सुनील शेट्टी।
0: सुनील शेट्टी किस फिल्म में अंजलि को भूलने नहीं वाले और ना उसको
2: भूलने
0: धड़कन में अंजलि की शादी किससे होती है?
2: अक्षय कुमार।
0: अक्षय कुमार किस फिल्म में अमरीश पुरी का पपी खो देते हैं?
2: वो तो बहुत अच्छी बहुत फेमस मूवी है, मुझसे शादी करोगी।
0: ओके जी, तो इतना अच्छा जो परफॉर्म किया है आपने उसके लिए ये टैग तो जरूर बनता है शिवांगी।
3: मिर्ची फिल्मची।
0: तो बाबू मोशाय, अगर ये गेम सुन के आपके अंदर का फिल्मची भी जाग रहा है तो उसको सोने मत दीजिएगा, क्योंकि कल एक बार फिर से इस गेम की शुरुआत जरूर होगी। राइट हियर ऑन मिर्ची, मैं हूँ आपके साथ श्रुति, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: आमिर खान, आप तो परफेक्शनिस्ट हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। किरण राव के बारे में कोई एक ऐसी चीज बताइए जो हमें नहीं पता।
3: किरण जो है अपना करियर जो एक तरह से कह सकते हैं बिगेन एज रेडियो जॉकी। करीबन 1.5 साल तक उन्होंने शो संभाला।
4: बहुत साल पहले जब FM शुरू ही हुआ था हमें एक बहुत लेट नाइट शो दिया गया था, विकेड आवर था। बहुत मजा आता था, मैं खुद जो मुझे चाहिए था मैं बजाती थी और मजा करती थी स्टूडियो में।
2: और किरण जी, अगर आज हमने ऐसा कर लिया ना, हमारी तो जॉब गई हाथ से। आप सुन रहे हैं मिर्ची हिट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची हिट्स हॉट।

0: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
1: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार बार बार कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
2: 89.6
3: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Right? This is the need of the hour.
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
0: बाबू मोशाय. मैं एक कॉन्वर्जेशन की बात कर रही हूँ जो हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, हम कॉन्वर्जेशंस करना तो भूल ही जाते हैं यार. एंड यू नो व्हाट, हमेशा कंफर्टिंग कॉन्वर्जेशंस ही सही नहीं होती है. कुछ कॉन्वर्जेशंस आपको रियलिटी चेक भी देती है. और अचानक से ये कॉन्वर्सेशंस की बात इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आज के पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू हिंदी सिनेमा के कुछ ऐसे सीन्स लेकर आई हूँ जहाँ कॉन्वर्सेशन प्लेड अ मेजर रोल. तो चलो लिस्ट की शुरुआत करते हैं विद द मूवी वेक अप सिड. वेल, इस फिल्म में एक सीन है जहां आयशा और सिड के बीच एक हैवी कॉन्वर्सेशन होती है ऑन बीइंग इंडिपेंडेंट एंड चाइल्डिश. जहां आयशा एक इंडिपेंडेंट वुमन है, वो जानती है कि किस तरीके से अपने बाउंड्रीज सेट करना है और वो लोगों को इस तरीके से चीजें समझाती है कि सामने वाला डिस्कम्फर्ट फील नहीं करता उसकी बातों से. एंड इन दिस पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन जो सिड के साथ वो छत पे कर रही होती है, वो उसको बताती है कि किस तरीके से इट इज इम्पॉर्टेंट टू बी इंडिपेंडेंट. वेल, टॉकिंग अबाउट दिस मूवी वेक अप सिड, इट इज सच एन इनसाइटफुल फिल्म कि क्या ही बताऊं. मतलब एक महिला को दिखाया गया है हु हैज एजेंसी ऑफ अथॉरिटी और उसका एग्जिस्टेंस इस फिल्म में सिर्फ उस मर्द को, उस मैन को फिक्स करना नहीं है. खैर, ऐसी ही कुछ और चार कॉन्वर्सेशनल सीन्स की होगी बात, बट इन अ वाइल्ड टिल द न्यू स्टेडियम विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी जिसका नाम है श्रुति.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: क्या बताओ यार, कंपनी इतनी टॉक्सिक हो गई है मेरी, टीम से सब लोग एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं, अब मैं अकेला ही बच गया हूँ, क्या करूँ?
1: अरे मामू तो तू छोड़ देना तो कंपनी से क्या टॉक्सिसिटी चली जाएगी।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: भाई इसके बिना ह्यूमन एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है।
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: बाबू मोशाय, मैं कॉन्वर्सेशंस की बात कर रही हूँ, बातचीत की बात, जिसके बिना हमारी जिंदगी बिल्कुल अधूरी है यार। लेकिन वी आर समवेयर डाउन द लाइन मूविंग टुवर्ड्स अ फ्यूचर जहाँ पे लोग एक दूसरे से बात करना उतना पसंद नहीं कर रहे हैं। बट ऐसे में कॉन्वर्सेशंस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको समझाने के लिए मैंने हिंदी सिनेमा का सहारा लिया है। एंड आई हैव गॉट यू सम 5 मूवीज जिनके ये 5 सीन इतने एपिक हैं दैट आपको समझ में आएगा कि लाइफ में कॉन्वर्सेशन की क्यों इतनी जरूरत होती है। लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट मूवी वेक अप सिड, एंड उसमें आयशा और सिड की वो कॉन्वर्सेशन ऑन द टेरेस। अब बात करते हैं फिल्म गहराइयां के बारे में, जिसमें दीपिका पाडुकोन के कैरेक्टर अलीशा की कॉन्वर्सेशन दिखाई गई है विद हर फादर प्लेड बाय नसरुद्दीन शाह। वेल, दिस इज अ वेरी पावरफुल कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ फादर एंड अ डॉटर, जो अपनी बेटी को समझाता है कि वो किस तरीके से अपने इनर चाइल्ड को हर्ट नहीं कर सकती। एंड दिस सीन इज ट्रूली रिमार्केबल इन द सेंस दैट वी आर ऑफन टोल्ड कि भाई दूसरे को फॉरगिव कर दो, बट हमें कोई ये नहीं समझाता कि अपने आप को फॉरगिव करना, माफ करना कितना ज्यादा जरूरी है इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। खैर, लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और अब नंबर 3 पे बात करते हैं फिल्म कपूर एंड सन्स से टिया और अर्जुन के उस कॉन्वर्सेशन की जो ग्रेवयार्ड में हुई थी। टिया प्लेड बाय आलिया भट्ट एंड अर्जुन यानी सिद्धार्थ मल्होत्रा। सो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा सीन है जहां दो लोग एक दूसरे से बिना किसी हेजिटेशन के बात कर रहे होते हैं, दैट टू इन अ ग्रेवयार्ड। सो ऑल इन ऑल द कंफर्ट एंड ऑनेस्टी दैट दीज टू पीपल हु ट्रस्ट ईच अदर हैव इन दिस पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन इज अमेजिंग। वेल, आपके लाइफ में कौन है वो इंसान जिससे आप ये अच्छी वाली कॉन्वर्सेशंस करते हो? डू लेट मी नो अबाउट दैट। हाँ, व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, 9930983983 नंबर है। Meanwhile, stay tuned to Mirchi with this ladki badi filmi, jiska naam hai Shruti.

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na wiedwa la burga. Milci, burga.
1: Hello,
2: Mr. Gotham.
1: कौन बोल रहे हैं?
2: सर मैं एक्चुअली आप सर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं सर आप सुना है वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
1: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
2: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
1: सर कुछ गा के सुनाएगा?
2: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर, वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
1: अरे एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ, उसको भेज दो।
2: वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
1: कौन से गाने
2: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। मैं एक पेशकश कर रहा हूँ। तन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया। सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा।
1: सुन ले बात, मेरी बात सुन पहले। और ऐसा बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
2: है। सर बोलिए,
1: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात है?
2: जी सर।
1: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
3: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया, मुर्गा बन गया आपका।

0: अमित के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: पटाक।
2: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष महापुरुष,
0: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6
4: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: भाई इस चीज के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हाँ जी बाबू मोशाय, मैं कॉन्वर्जेशन की बात कर रही हूँ जिसके बिना आई जस्ट कांट सस्टेन। मतलब अगर मुझे किसी पे गुस्सा भी आया होता है ना, देन आई एम लाइक कि भाई बातचीत करके खत्म करते हैं, ऐसे चुप रहेगा ना कुछ नहीं होने वाला। इनफैक्ट वी आर गोइंग टू बिल्ड अप मोर एंगर फॉर ईच अदर। और अचानक से कॉन्वर्जेशन की बात इसलिए चल रही है क्योंकि हिंदी सिनेमा के कुछ ऐसे कॉन्वर्जेशन इतने इम्पैक्टफुल लगे हैं मुझे दैट उनको डिस्कस करना मुझे जरूरी लगता है। इसलिए आज का पांच का पंच की लिस्ट इज डेडिकेटेड टू सच कॉन्वर्सेशंस। तो चलो लिस्ट में आगे बढ़ते हुए नंबर चार पे बात करना चाहूंगी राणा और पीकू के कॉन्वर्सेशन की इन द मूवी पीकू। और इस मूवी से मेरा फेवरेट सीन इज जहां इन दोनों के बीच वो कॉन्वर्सेशन होती है ना, जब पीकू बोलती है विदाउट एनी फियर जो भी वो फील करती है अपने पेरेंट्स के बारे में आफ्टर एन एज दैट हाउ दे बिहेव लाइक चिल्ड्रन और किस तरीके से हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। सो दिस पर्टिकुलर थिंग एक्चुअली स्टेड विद मी फॉरएवर। चलो अब लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट द मूवी डियर जिंदगी, जिसका एक पर्टिकुलर सीन है जहां जग प्लेड बाय शाहरुख खान, कायरा प्लेड बाय आलिया भट्ट को एक साइकिल राइड पे लेकर जाते हैं। एंड उस पर्टिकुलर सीन में आलिया भट्ट पूछती है शाहरुख खान से कि भाई ये अचानक हम साइकिल से क्यों घूम रहे हैं। देन शाहरुख सेज दैट इट इज गुड टू ब्रेक पैटर्न्स। तो यहां हमें समझाया गया है किस तरीके से अपने लाइफ में जो एक सेट पैटर्न पे हम चल रहे होते हैं उससे हट के भी चीजें करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। ऑल्सो इसी पर्टिकुलर सीन में जग कायरा को सिखाता है कि भाई किस तरीके से उसको अपने लाइफ की ड्राइविंग सीट पे आके उसका कंट्रोल खुद अपनी हाथों में लेना जरूरी है। एंड दिस गोज फॉर ऑल ऑफ अस आउट देयर, राइट? वेल, मेरी इस लिस्ट में अगर ऐसी ही कोई कॉन्वर्सेशनल सीन आप एड इन करना चाहो देन फील फ्री टू कनेक्ट विद मी फेसबुक या इंस्टाग्राम पे। मैं मिलूंगी MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से। और उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी है ब्रो, नोट कर लो, एंड इट इज 9930983983। मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी जिसका नाम है श्रुति।

0: She can already read what's on your mind. She knows what you are thinking. Coming soon. Stay tuned.
1: Stay tuned.
2: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
3: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
4: बहुत कुछ होगा।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM मिर्ची वन।
7: इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Janelia Deshmukh.
3: Are you an honest critic?
4: I'm an honest critic, but I'm also good for your ego.
3: Are kya baat hai?
4: No, like even if you're my friend,
3: I mujhe validate kar le yaar. Hello, Janelia. I'm not feeling great.
4: Are you honest
3: too, man? Queen. Where's your crown?
2: She's an honest critic, but a very funny person also. Ye thi Janelia Deshmukh on Mirchi. It's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi. It's hot.
5: Hello, Sharps. Our product is phenomenal, one of a kind, but still profit nahi ho raha hai. Maine Baba ji se advice li to kehte hain.
6: Office ke toilet mein toilet paper white nahi, yellow lagao, profit aayega.
5: Relative se advice lo to kehte hain.
7: Kaam ko time do, 25 ghante kaam karo, dark circles honge to future bright hoga.
5: Isiliye main aapke paas aaya hu promotion fund ke liye, jiske liye aap 50% equity le sakte ho.
8: Bhai kya kar raha hai tu? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है. गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट.
9: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची. टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ. कॉल नाउ 7070 7687.

खल नायक हूँ मैं। एक सच्चे फिल्म जी ने तो गेस कर लिया होगा दैट ऑफ कोर्स फिल्म खलनायक की बात हो रही है, जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 1993, डायरेक्टेड बाय सुभाष घई, जिसमें संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ लीड रोल्स निभाते नजर आए थे। सो इस मूवी के बारे में नीता लूला, हु इज अ वेल नोन रेप्यूटेड डिजाइनर ऑफ आर इंडस्ट्री, उन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग सी बात इंटरव्यू में शेयर की। ये जो गाना है ना, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, तो उसके लिए डायरेक्टर सुभाष घई ने नीता लूला को हायर किया और कहा कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर गाने के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन करवानी है, तो आपके पास जो ऑप्शन है मुझे बता दो। जिस पे नीता लूना ने कहा कि सर अगर आप बुरा ना माने तो प्लीज मुझे ये गाना पहले सुना दोगे, एंड ही वाज सरप्राइज्ड एंड टेकन अबैक, है गाना क्यों सुनना है भाई, आपको कॉस्ट्यूम डिजाइन्स देने हैं ना मुझे, बट शी स्टिल इंसिस्टेड कि प्लीज आप सुना तो दो। मीनवाइल सुभाष घई के पास रफ ड्राफ्ट था ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉन्ग, उन्होंने नीता लूला को ये गाना सुनाया और जब तक वो गाना खत्म हुआ नीता लूला ने उनके सामने एक स्केच प्रोड्यूस किया। सो बेसिकली नीता लूला ने वो गाना सुनते सुनते स्केच बनाया था विच वॉज द ड्रेस जो इस गाने के लिए तैयार हुआ, एंड दैट्स व्हेन शी बिकेम हिज फेवरेट। Which reminds me कि यार जिंदगी में हम भी कभी कभी ऐसे सिचुएशन में आते हैं ना कि सामने बहुत बड़ा कोई इंसान है और हम क्योंकि न्यूबी हैं इन द इंडस्ट्री, वी रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम शेयरिंग आवर ओपिनियन, बट दैट्स द एग्जैक्ट मोमेंट जब आपको याद रखना होगा दैट यू शुड नेवर लेट एनीवन लुक डाउन ऑन यू जस्ट बिकॉज यू आर स्टार्टिंग आउट। बाकी तो समझदार को इशारा काफी यार। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन बोलिए।
2: मेरी ऑफिस में मेरे से बेवकूफ लोगों को ज्यादा सैलरी मिलती है, क्या करूँ?
1: ओ माय बॉय, तो तू ये सोच कि असली बेवकूफ कौन हुआ?
3: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6, मिर्ची।

0: भाई इन लोगों की वजह से ना मम्मी पापा का वो अल्टीमेट डायलॉग याद आ जाता है।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप एंड मम्मी पापा का ये वाला डायलॉग अक्सर सुना होगा कि हाँ बेटा इतना ध्यान इतनी मेहनत अगर आपने पढ़ाई में की होती तो पता नहीं क्या ही आपका करियर जाता। सो आज मैं डिसाइड कर रही हूँ दो कैटेगरीज एज पर रियलिटी शोज देखने वाले लोग, जिसमें फर्स्ट आर द पीपल जो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट देखते हैं कि हाँ भाई ट्रेंड चल रहा है तो ट्रेंड का हिस्सा बन के रहना है मुझे। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है हो ये सोते जागते उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते बस इनका बस चले तो उस रियलिटी शो का सेकेंड बाई सेकेंड अपडेट रखें। अब देखो जैसे बिग बॉस जैसा शो अगर आता है तो टीवी के अलावा ये ओटीटी पे भी फुल ऑन चलता रहता है ना पूरे दिन, तो बस ये सेकेंड कैटेगरी वाले लोग आपको ऐसे ऐसे शोज के पीछे ही पागल दिखेंगे। तो बताइए फिर आप इन दोनों में से किस कैटेगरी के हो। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
2: मिर्ची फ्रेश माल। लव लॉस और होप का म्यूजिकल सफर वे जुनून।

0: इस गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सैयद कादरी ने। फिल्म आवारापन 2 से सुनते रहिए वे जुनून ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: वेल, आई हूँ तो काम की बात करके ही जाऊंगे। वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफ्रीन को राइट हियर ऑन मीठी मिर्ची। और मीठी सी खबर है, जैसे वेदर का क्या हालचाल है, बस वही सुनाने आई हूँ मैं।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
3: Weather update.
1: Well, the weather is not currently behaving meetha with us these days because गर्मी का मौसम है, we all know, बहुत लोगों ने यहाँ से escape कर लिया है। लेकिन जो लोग यहाँ पर हैं उनके लिए बता दूँ भाई, आज का maximum temperature 42 degrees Celsius पर रहने वाला है और minimum 32 पर जाएगा। अभी जो महसूस कर रहे हो ना आप अभी, हाँ वो 44 degrees Celsius के आसपास है लगभग। Humidity जो है वो 38% पर चल रही है, हवाएं धीमी सी हैं 14 किलोमीटर पर आवर पर। ऑल इन ऑल ये अब मेरे ख्याल में और एक महीना सबर कर लीजिए, उसके बाद में हमारे अच्छे वाले दिन जो है कतर में वो बिल्कुल शुरू ही होने वाले हैं। बस तब तक के लिए यू गॉट स्टे ट्यून विद अस, दैट इज ऑन 89.6 मिर्ची 1 माइक से दिल तक आफ्रीन के साथ। इट्स हॉट।
4: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813।

0: Milchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burka, burka. La vieja la burka.
2: Milchi, burka.
3: हेलो
4: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
3: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
4: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पूछा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
3: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
4: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
3: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
4: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घटो पहले भी बताओ ना मेरे को।
3: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
4: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
3: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
4: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
3: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
4: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया है फोन।
3: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
4: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
3: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
4: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो, जो रेड वेड मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है। मैं आप पहला रहा हूँ,
3: मैं बाद में मिलूंगा आपसे। यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
4: किसकी डेथ हो गई सर?
3: मेरे भाई की डेथ हो गई।
4: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स का फार्म है, आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
3: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसे हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रहे हो?
4: मैं कहाँ रहा हूँ,
3: सॉरी आप अभी कहाँ रहो?
4: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
3: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, एक तो परेशान हूँ मैं, हर साल का रिटर्न वेटर्न सब फाइल कर देता हूँ वो भी।
4: आशीष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
3: यार।
4: थैंक यू।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट,
6: इट्स पटाक।
7: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
8: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
9: हिट गाने
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
12: 89.6 FM Mirchi 1

देखो, कोई शहर में कोई इंसान नया नया ही आया हो, ये आपको कैसा पता लगता है? ये मैं आपको बताती हूँ, वो ऐसे कि जब कोई इंसान कुछ खरीदने से पहले उसे अपने होम टाउन, होम कंट्री के करेंसी में हमेशा कन्वर्ट करके देखता है कि हाँ ये इतने का है तो ये फिर ठीक है, या फिर ये इतना महंगा है या इतना सस्ता है, समझ जाइए ये वो शहर में नया बंदा है। ऐसी कुछ हाल था मेरा पिछले कुछ दिनों में, जहाँ पर मैं कुछ नए कंट्रीज गई थी, मैं घूमने गई थी यूरोप में, स्वीडन, फिनलैंड एंड एस्टोनिया, और वहाँ पर हर चीज खरीदने से पहले ना मैं इंडियन रुपीस में नहीं, अब मैं ना कतरी रुपीस में कन्वर्ट करके देख रही थी। ऑन दिस नोट, जहां पर हम एक्सचेंज रेट्स की इतनी बातें कर ही रहे हैं, तो चलिए आज के एक्सचेंज रेट्स पर भी नजर डाल दें। तो आज का एक्सचेंज रेट ये कहता है दैट 1 का 3 रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीस 26.30। ओह माय गॉड, जाने से पहले 10 दिन पहले तो कुछ हाल अलग था। वेल, पाकिस्तानी रुपीस की बात करें तो 76.36 पर है, वहीं 1 का 3 रियाल के बदले। बांग्लादेशी टाका आपको मिल रहे हैं 33.98, 1 का 3 रियाल के बदले आपको मिल रहे हैं श्रीलंकन रुपीस, दैट इज 92.15। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, 1 का 3 रियाल के बदले आपको मिल रहे हैं नेपाली रुपीस, वो है 42.08। ये थे आज के एक्सचेंज रेट, घर में जो पैसे ढेर सारी खुशियां और खुशियों का नंबर 1 फॉर्मूला, 1 एंड ओनली 89.6 FM पर, माइक से दिल तक आफरीन के साथ, इट्स हॉट।

0: She can already read what's on your mind. She knows what you are thinking. Coming soon. Stay tuned.
1: Stay tuned.
2: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
3: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
4: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM, मिर्ची वन।
7: It's hot.
8: यहाँ की लड़की

जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज

बैटिंग वाह वाह, बच्चन की एक्टिंग वाह वाह, सुनील गावस्कर वाह वाह, कपिल द सिक्सर वाह वाह, लता मंगेशकर वाह वाह, जाकिर का तबला वाह वाह, भरतनाट्यम वाह वाह, यहाँ का भांगड़ा वाह वाह, यहाँ की लावणी वाह वाह, यहाँ का डांडिया वाह वाह, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा, ईस्ट और वेस्ट India is the best. East or West? India is the best.

जीते हैं मस्त होके मस्ती में लोग सारे, जो है मजा यहाँ पे वो नाम मजा कहीं पे। यहाँ की ईद बाबा, यहाँ दिवाली बाबा, यहाँ की होली बाबा, दुल्हन की डोली बाबा, चनिया चोली

0: राजे शिवाजी बाबा, अकबर बादशाह बाबा, महात्मा गांधी बाबा, चाचा नेहरू बाबा, बाबा अंबेडकर बाबा, मदर टेरेसा बाबा।
1: We're taking it up and we're taking it down. This is the Indian sound. Together so strong in God we trust. Yeah, you cannot beat us.
0: ताज महल बाबा, चार मीनार बाबा, आम का अचार बाबा, यहाँ का प्यार बाबा, ऐश्वर्या राय बाबा, सुष्मिता सेन बाबा, ऑल इंडिया रेडियो बाबा, डीडी मेट्रो बाबा, दूरदर्शन बाबा।

जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशन हमारा, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।

0: लव इजंट अबाउट परफेक्ट टाइमिंग।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्चे पे ट्यून रहो आप, और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसा एग्जांपल सेट करने वाला मिल ही जाता है यार। और आज जिनकी कहानी मैं सुनाने वाली हूँ वो आई एम श्योर आपके भी फेवरेट्स रहे हैं। विशाल भारद्वाज दी ओजी डायरेक्टर एंड उनकी वाइफ रेखा भारद्वाज, जिनकी आवाज के हम सब कायल हैं। सो बेसिकली द कहानी इज कि रेखा जी को म्यूजिशियन बनना था, सिंगर बनना था, लेकिन विशाल भारद्वाज को फिल्मों में नहीं आना था। लेकिन क्योंकि उनकी वाइफ को ऐसा करना था, इस दुनिया में आना था, तो वो भी इंडस्ट्री में घुसे और बहुत जल्द बड़े भी बन गए। बट रेखा जी का करियर नहीं चला। उनको प्यार तो मिल गया लेकिन करियर नहीं मिला, एंड शी गॉट डिप्रेस्ड इन अ वे, और वो ओशो के पास चली गई अपनी शादी छोड़ के। अब देखो, ऐसी सिचुएशन में कोई दूसरा मर्द होता तो वो शायद से शादी को ही तोड़ देता। बट विशाल भारद्वाज ने एक साल तक रेखा भारद्वाज का इंतजार किया, बट जब वो लौट कर नहीं आई ना, देन ही हिमसेल्फ वेंट डाउन टू ओशो। उसके कुछ टाइम के बाद विशाल भारद्वाज ने फिल्म बनाई ओमकारा। उसमें रेखा भारद्वाज की आवाज थी फॉर द सॉन्ग नमक इश्क का, एंड रेस्ट वी ऑल नो इज हिस्ट्री। तो या इट वॉज अ ब्यूटिफुल लव स्टोरी जिसमें पत्नी कई बार जाना चाहती रही, बट विशाल भारद्वाज का अपनी वाइफ के लिए जो प्यार था वो इतना खूबसूरत था दैट इट चेंज्ड एवरीथिंग अराउंड देम। तभी मैंने कहा लव इजंट ऑलवेज अबाउट परफेक्ट टाइमिंग। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
1: प्रियंका चोपड़ा, आपने विशाल भारद्वाज के साथ दो फिल्में की हैं, देयर इज सात खून माफ, देयर इज कमीने। आप दोनों की जुगलबंदी को देख के लगता है कि बहुत मजे आते होंगे सेट पे।
2: हाँ, लगता ही है। ही इज द काइंड ऑफ डायरेक्टर, एज एन एक्टर यू हैव टू रियली ट्रस्ट हिम, क्योंकि ही इज हिज आइडियाज कम फ्रॉम वेयर यू नेवर अंडरस्टैंड एंड इफ यू स्टार्ट जस्टिफाइंग इट। जैसे अगर उन्होंने कुछ बोल दिया, जैसे कि यू नो तुम यहाँ पे सीढ़ियों से आ रही हो, अगर मैं सोचने लगी कि मैं सीढ़ियों से क्यों आऊंगी, तो फिर तो मतलब आपकी कभी नहीं बनेगी, बट यू हैव टू ट्रस्ट हिम।
1: ये थी प्रियंका चोपड़ा टॉकिंग अबाउट विशाल भारद्वाज ऑन मिर्ची इट्स हॉट। बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
4: अरे, पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
5: कैसे रुक सकता है?
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: बाबू मोशाय, आजकल तो इंटरनेशनल फिल्में भी इंडियन मार्केट में कम्पीट कर रही हैं।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची बेटी उन दिन हूँ आप, और चलो इस कंपटीशन के बारे में थोड़ा डिटेल्ड में बातचीत करते हैं। देखो, मैंने ना एक आर्टिकल पढ़ा जहाँ इट वॉज मैंशन कि क्रिस्टोफर नोलन की रिसेंटली आई फिल्म दी ओडिसी ने टॉम क्रूज के मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग का रिकॉर्ड शैटर कर दिया है। एंड दिस हैपेंड बिकॉज द ओडिसी अर्नड रुपीज 15.33 करोड़ फ्रॉम जस्ट 34 IMAX screens. और अगर ओवरऑल ग्लोबल कलेक्शन की बात करें अबाउट द मूवी, तो इस फिल्म ने IMAX के साथ $52 मिलियन कलेक्ट किए हैं, जिसमें से 20% ऑफ द कमाई इज फ्रॉम द स्क्रीन्स दैट शोकेस्ड द फिल्म इन इंडिया, विच एक्चुअली इज एन एग्जांपल कि ग्लोबल मार्केट हाइपर लोकल बनता जा रहा है। तो आपने जो अपने दिमाग में वेस्टर्न कल्चर को लेकर एक बहुत ही अमेजिंग पिक्चर बना रखी है, उसको रखिए, जरूर रखिए, बट एट द सेम टाइम डोंट फॉरगेट योर रूट्स एज वेल। बाकी तो समझदार को इशारा काफी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: या मिर्ची हेल्पलाइन, बताओ क्या प्रॉब्लम है?
0: जब भी मैं मॉल में शॉपिंग करने जाता हूँ, एक चीज लेनी होती है, पांच लेके आ जाता हूँ, क्या करूँ?
1: ये तो गलत है, अगली बार से एक ही लाना, क्योंकि पांच लेकर पकड़े जाओगे तो मॉल वाले चोर समझकर मारेंगे।

0: कभी कभी कुछ ऐसा होता है ना कि आप कुछ पढ़ लेते हो और वो चीज जो है वो आपके दिमाग में जाकर एकदम सही जगह पर पिंच करती है। ऐसा ही कुछ मैंने कल पढ़ा, और जब मैंने पढ़ा ना तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। मैंने कहा यार ये तो मैं आपको सुना के रहूंगी।
1: सारा जमाना ए सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tuned in with me on Mirji. और मैंने ना चंद लाइन्स पढ़ी और मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो कितना रेजोनेट करता है यार लाइफ से। मैंने कहा कि यार आप बड़े शौकीन हो इन सारी चीजों के, तो आपको भी सुनाती हूँ ये चीज। तो बात कुछ ऐसी है कि एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था, चाहत चांद को पाने की थी पर दिल तितलियों का दीवाना था, थक कर आना स्कूल से फिर भी खेलने जाना था, बारिश में कागज की नाव थी, हर मौसम सुहाना था, रोने की वजह ना थी ना हंसने का बहाना था, क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो बचपन का जमाना था। देखा, लगा ना, वाकई में लगा ना। मतलब हम अपनी लाइफ में अलग ही अडल्टिंग का जोन जो है वो लेकर बैठे हुए होते हैं, अपनी लाइफ चल रही होती है, कट रही होती है, फिर एकदम से आप कुछ पढ़ लेते हो, आप कुछ देख लेते हो और फिर आपको लगता है ओ नो, हाँ यार वो भी क्या जमाना था और बचपन हमें जरूर याद आना था। तो चलो फिर थोड़ा और याद करते हैं 90 के जमाने को, और मिड्डे मोहब्बत की गाड़ी को उसी तरफ घुमाती हुई 90s के गियर में डालती हुई आपसे कहती हूँ, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: मिड्डे मोहब्बत
3: प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज, फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: Mirchi. Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga. Mirchi, murga.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello, Benji.
1: हाँ जी.
2: ये एक सेकंड. ये बहन जी, हम आपके पड़ोस में रहते हैं. ये मेरा एक्चुअली बच्चा बहुत रो रहा है और मेरी वाइफ का फोन लग नहीं रहा है. वो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है. अगर
1: आप... आपके घर में कोई नहीं है क्या?
2: नहीं, वाइफ है, वो गई हुई है कहीं. तो आप थोड़ा सा, आपको अगर कुछ मालूम हो तो. एक सेकंड बेटे, चुप.
1: आप अपनी वाइफ को फोन करिए ना, उन्हें बुलवाइए जल्दी.
2: नहीं, मैं उनको ही फोन कर रहा हूँ. एक सेकंड. आली है मामा आएंगी, मामा आएंगी. एक सेकंड बहन जी, आप होल्ड करेंगी? एक सेकंड सर. आएंगी मामा, आएंगी, चीजी लाएंगी बेटे, चीजी लाएंगी. नहीं, चुप हो रहा. आई एम सो सॉरी, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं ऐसे.
1: नहीं, इसमें डायपर पहना है तो चेक करिए, गीला तो नहीं है.
2: एक सेकंड, इधर आओ. हाँ, इधर आओ. देखो, मामा आ गई, चीजी लाई. हाँ, डायपर गीला है बहन जी इसका,
1: उतार लीजिए उसको.
2: एक सेकंड रुकिए. ये इसके गले में अटक रहा है डायपर. एक सेकंड,
1: शायद आप बेब उतार रहे हैं उसका.
2: अच्छा, ये बेब है. एक सेकंड,
1: देखिए सुसु करा होगा उसने. देखिए,
2: हाँ, सुसु ही करा. चल,
1: उतार दीजिए एक सेकंड.
2: उतार दिया. मैं जी, मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा कह देंगे, मैं स्पीकर फोन पे लगा देता हूँ, शायद आपकी आवाज से समझ आए जरा. देखो आंटी कर रही
1: है.
2: क्लैपिंग करो. मुझे भी वही याद आ रहा है. नहीं बहन जी, आप सही कह रही हैं. रात को ना इसने वो मुर्गा खा लिया था, जिससे पेट में दर्द हो जाता है और थोड़े बहुत कान खराब हो जाते हैं. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने आपका नंबर डायल किया.
1: और मैं पागल हूँ.
2: अब जरा मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए एक बार.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
3: ओह भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक. कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मेरा ना समीर सोनी पर बहुत बड़ा क्रश था एंड आई न्यू ही इज अ मॉडल क्योंकि मैंने ना उनकी एक झलक दूध दूध दूध दूध वो वाले एड में देखी थी और मैं जब भी देखती थी ना देख देख कर उछल जाया करती थी. तो जब उनकी मूवी चाइना गेट आई उसे मैं कैसे मिस कर सकती थी यार.
0: मिर्ची VCR.
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. एंड नहीं, मैं इतना डिसीजन मेकिंग में नहीं थी कि सबको उठा के थिएटर लेकर चली जाती कि नहीं नहीं मुझे चाइना के थिएटर में देखनी है. नहीं नहीं, इतनी हम लोगों की औकात नहीं हुआ करती थी एज किड. ये तो केबल पर जब मूवी आई तो मैंने उसको मिस नहीं किया. एंड वेल, ये समीर सोनी की डेब्यू फिल्म तो थी ही थी लेकिन टेक्निकली समीर सोनी वॉज नॉट अ हीरो इन द फिल्म. ही वॉज एक्चुअली डूइंग अ सपोर्टिंग रोल क्योंकि मेन लीड्स तो यार अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह, डैनी डोंगजप्पा, ओम पुरी ये सब थे. और इस फिल्म में समीर सोनी के ऑपोजिट थी ममता कुलकर्णी. लेकिन क्या आपको पता है कि जो चाइना गेट का पोस्टर बना था ना उस पर ममता कुलकर्णी कहीं नजर नहीं आई थी. और इसके पीछे रीजन ये है कि ममता कुलकर्णी और राजकुमार संतोषी के बीच में एक मेजर फॉलआउट हुआ था. हालांकि इस लड़ाई के बाद वो वापस मूवी करने के लिए आई तो सही लेकिन उसके बाद राजकुमार संतोषी ने उन्हें अपनी फिल्म में ज्यादा प्रमोट नहीं किया और जो पोस्टर बना चाइना गेट का उसमें बाकी सारे एक्टर्स के साथ उर्मिला मातोंडकर की पिक्चर लगाई गई ना कि ममता कुलकर्णी की. हालांकि उर्मिला वॉज इन द फिल्म फॉर जस्ट वन सॉन्ग एंड दैट वॉज छम्मा छम्मा. लेकिन ऑनेस्टली आई मीन पूरी फिल्म करने के बाद भी ममता को इतना नाम नहीं मिला जितना कि उर्मिला मातोंडकर को एक गाना करने के बाद मिला था. लेकिन क्या आपको पता है इस पूरी कास्ट में एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने अपना रोल निभाने के लिए न जाने कितने दिनों तक नहाया ही नहीं था. बताऊंगी आपको आगे थोड़ी देर में. यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is Akshay Kumar.
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान। खान, खान, खान, खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहाँ कहाँ थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुँचाया।
7: यहाँ की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहाँ का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया. बोलो ये कौन सी मूवी का डायलॉग है?
0: Mirchi. Chat room.
1: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा. और सही जवाब है चाइना गेट. मतलब चाइना गेट में न जाने कितने सारे ऐसे डायलॉग्स थे जो कि आज तक मुझे याद है. एक तो ये डायलॉग, एंड देन देयर वाज दिस वन और डायलॉग जिसमें कि प्लेटफॉर्म का सीन होता है और एक जनाब दूसरे जनाब से पूछ रहे होते हैं कि भाई साहब आपके बजे में कितने घड़े हैं. अगला इंसान कहता है नौने पौ. I still use this dialogue in my life. अगर पौने नौ बज रहे होते हैं और कोई मुझसे पूछ ले कि कितने बज रहे हैं तो मैं नौने पौ ही बोलती हूँ, पौने नौ नहीं बोलती. लेकिन कमिंग बैक टू चाइना गेट, हाँ, ये जो फिल्म बनी थी इसके अंदर जो जगीरा का रोल प्ले करने वाले मुकेश तिवारी थे, जिनकी की ये पहली ही फिल्म थी, उन्हें न जाने कितने सारे अवार्ड्स में नॉमिनेट किया गया था फॉर हिज विलेनियस रोल. हाँ, और किया भी क्यों ना जाना चाहिए था, इतना सराहा गया था उनका ये कैरेक्टर बिकॉज उन्होंने काम ही ऐसा किया था. लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि अपने कैरेक्टर को बरकरार रखने के लिए, उसका लुक मेंटेन करने के लिए और जगीरा जैसा फील करते रहने के लिए मुकेश तिवारी ने न जाने कितने दिनों तक नहाया ही नहीं था. हाँ जी, वो बिल्कुल अपना परफ्यूम इस्तेमाल किया करते थे. एंड ही डिड नॉट टेक अ शावर जस्ट सो दैट ही लुक्स एज गंदा एज जगीरा. इसे कहते हैं मेथड एक्टिंग. सर्दियों में हम भी यही करते हैं. हाँ, वी ऑल्सो टेक अप अ कैरेक्टर एंड वी वॉन्ट टू लुक लाइक दैट कैरेक्टर. एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन कि बहुत सारे लोग शावर नहीं ले रहे होते हैं सर्दियों में. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
0: Midday Mohabbat
2: presented by Absolute Barbecues. From savory to sweet, experience the ultimate flavors at Absolute Barbecues.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: विशाल भारद्वाज, आप फिल्म डायरेक्ट भी करते हैं, आप म्यूजिक भी देते हैं और आप गाना भी गाते हैं। कई लोग इंडस्ट्री में आपसे काफी खफा होंगे, उनका निवाला जो छीन लेते हैं आप, नहीं?
3: हमेशा एक आयरनी होती है कि शूटिंग से पहले मुझे गाने पूरे करने का टाइम नहीं मिलता है, तो सारे गाने मुझे खुद करके बाद में वॉइसेस चेंज करता हूँ। ऑल द मेंबर ऑफ माय यू नो टीम जैसे कि नहीं ये गाना भी आप गाओ ये गाना भी, बड़ा एम्बेरसिंग मुझे लगता है। और सिंगर्स थे वो सब, जब मैं उनसे पार्टी में मिलता हूँ तो सब मुझे बोलते हैं कि यार ये हद हो गई यार, तुम गाने भी, तुम सारे गाने शुरू कर दिए। और मुझे मालूम है कि पीछे में लगता होगा गाया जाता नहीं है, सांस पूरी आती नहीं है, फिर भी गाने में लगा हुआ है।
2: भाई हम तो कहेंगे थैंक यू उन गानों को बनाने के लिए, म्यूजिक देने के लिए और गाना गाने के लिए। दैट वॉज विशाल भारद्वाज ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood Boldal Bollywood Bollywood Bollywood Boldal
1: Only on Mirchi It's Hot
4: Our business is our business None of your business
5: Par didi our entertainment is your entertainment Entertainment
6: Qatar ka number 1 radio station 89.6
7: 89.6 89.6 FM Mirchi 1 It's hot.

0: बोल दामिनी बोल। बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
1: वो ना वो पराठे गरम करते वक्त मैं कितना भी ध्यान रखूं वो जल ही जाते हैं और मेरी मम्मी इतना गुस्सा करती है, मैं क्या करूं?
0: क्या करूं का क्या मतलब है, जलने वाले तो जलेंगे, तू मम्मी को बोल के किचन में ना खड़ी रहे। सिंपल है।
2: खोपड़ी तो।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आपको दूरदर्शन का गुमशुदा की तलाश सेगमेंट याद है?
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन.
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. डीडी वन पर रोज शाम को जब न्यूज आया करती थी तो उसमें एक सेगमेंट हुआ करता था गुमशुदा की तलाश. याद तो हो गई यार, जो आज हमारे लिए अपने दोस्तों के लिए एक ताना बन के रह गया है कि हम अब उनके लिए कहते हैं कि तुम आते नहीं हो इसलिए हमें गुमशुदा की तलाश है. लेकिन ये कभी एक सीरियस सेगमेंट हुआ करता था जहां गुमे हुए लोग जो है उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही होती थी वाया द टेलीविजन. बट एक राज की बात बताऊं मैं आपको, जब इस सेगमेंट में गुमशुदा लोगों की पिक्चर स्क्रीन पर दिखाई जाती थी ना, तो ऑनेस्टली अगर वो इंसान मेरे पास भी बैठा होता ना तो मैं भी उसे नहीं पहचान पाती. वैसे तो आज भी किसी लड़की का फोटो देखकर उसे ढूंढना मुश्किल हो जाए, क्योंकि बिना मेकअप ऑफ कोर्स किसी का चेहरा समझ नहीं आता और बिना मेकअप कोई आजकल फोटो नहीं खिंचवाता. बट एनीवेज, जोक्स अपार्ट, हम बच्चे ना इस सीरियस सेगमेंट को मजाक बना दिया करते थे. जब कोई फोटो स्क्रीन पर दिखती थी ना तो हमारा बोलना शुरू हो जाता था एक दूसरे की टांग खींचते हुए और एक दूसरे को छेड़ते हुए कि अरे देख तेरी फोटो दिखा रहे हैं टीवी पर. और पता नहीं इसमें छेड़ने वाली बात क्या थी और छिड़ने वाली बात क्या थी कि छेड़ने वाला छेड़ता था और छिड़ने वाला भी बुरी तरीके से तुनक जाता था और छिड़ जाया करता था. बट जो भी था भाई, बात ये भी कितनी सही है ना कि आज किड्स हम सीरियस चीज में भी फन ढूंढ लेते थे. एंड आई होप कि आप आज भी इस प्रथा को फॉलो करते हो, बिकॉज़ लाइफ को हम सीरियसली नहीं ले सकते बाबू मुशाए. क्यों? क्योंकि लाइफ इटसेल्फ इज यूज्ड टू क्रैकिंग जोक्स ऑन अस. इसी बात पर ताल से ताल मिला. कमिंग अप दिस नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
0: Midday Mohabbat presented by Absolute Barbecues. From savory to sweet, experience the ultimate flavors at Absolute Barbecues.

0: Milci.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La viva la burga. Milci, burga.
2: हेलो।
3: हाय शिवानी।
2: हाय।
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
2: समाचार?
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा।
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा
2: फेवर,
3: मैं वही बता रहा हूँ। शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा।
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे ही करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको, रोका हुआ है।
3: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
3: ये सिर्फ 3। अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
2: सिर पे करवा ले
3: शिवानी।
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद के कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन काटना, शिवानी मेरी बात सुनो।
2: नहीं
3: नहीं, बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
2: कुकड़ुकु
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट पटक।
5: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें,
6: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
4: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
6: कम है के?
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
4: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: ये वो गाना है जो आपको ऑफिस में वायरल कर सकता है. मोहित चौहान ने गाया, इतनी मस्ती बहना इस गाने को, आई स्वेयर. यू नो व्हाई आपको वायरल कर सकता है, क्योंकि अगर इस गाने को आप ईयरफोन्स पे सुन रहे हो ना, तो आप आसपास की दुनिया जो है ना उसको तो भूल ही जाओगे, और फिर आसपास की दुनिया को भूलने के बाद जो आप अपने आप में खो जाओगे और नाचते हुए नजर आओगे और अजीब अजीब सी आप क्रियाएं करते हुए नजर आओगे ना, तो ऑफकोर्स वायरल होना तो बनता है ना बॉस. ये गाना ही वही है जो आपको दुनिया भुला देता है, आपकी करंट प्रॉब्लम्स जो है वो भुला देता है, और आपको सिर्फ और सिर्फ जिंदगी की ताल पर नहीं, इस गाने की ताल पर नचा देता है.
1: सारा जमाना सारा का दीवाना.
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
0: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और हम जो म्यूजिक के इतने दीवाने हैं मेरे यारा, वही तो आ जाते हैं रोज रोज ये कहने के लिए कि मान ना मान करो गानों की पहचान. अब सिंस मुझे पता ही है कि आप म्यूजिक के इतने फैन हो और म्यूजिक आपके लिए थेरेपी है, तो यहीं पर मैं एक दाव खेल जाती हूँ और रोज आपके लिए एक सवाल गाने की सूरत में चलाती हूँ और दो गानों की धुनों को मिक्स करके आती हूँ और आपसे पूछती हूँ कि बताओ यार ये दोनों गाने कौन से हैं. तो आज की जो दो धुनों का मिक्स है वो है कुछ यूं. गिव इट listen.

0: बस जी, अब आपको डीएम करना है ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, और बता देना है कि ये दो कौन से गाने हैं जो अभी आपने सुने। मिर्ची सारा इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, याद रखिएगा। एंड स्टे ट्यून रहिए विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिडडे मोहब्बत
2: प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज, फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: She can already read what's on your mind. She knows what you are thinking. Coming soon. Stay tuned.
1: Stay tuned.
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
3: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है,
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: I'm not too sure आपने अर्जुन रामपाल और मनीषा कोइराला की मोक्ष देखी है कि नहीं, क्योंकि ये फिल्म कब आई कब गई पता ही नहीं लगा, लेकिन मैंने जरूर देखी है क्योंकि यार केबल पे जो फिल्म आती थी ना रात के 12 बजे के बाद वो मैं डेफिनेटली देखा करती थी।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, ये फिल्म नहीं लेकिन इस फिल्म का एक गाना ऐसा है जिसकी पूरी की पूरी धुन, यानी कि जो म्यूजिक है इस पूरे पूरे गाने का, वो कट कॉपी पेस्ट है, थैंक्स टू मिस्टर राजेश रोशन जिनका म्यूजिक इस गाने में दिया गया है। द गाना इज दिस वन।

0: जो सनसनाए, क्यों जिस्म थरथराए, कोई बताए मुझको।
1: और इसे उठाया गया है फ्रॉम एन आर्टिस्ट जिनका नाम है वैंगेलिस, और इन्होंने ये म्यूजिकल कॉम्पोजिशन बना के बस छोड़ दिया था शायद इसी दिन के लिए कि एक दिन राजेश रोशन आए, यही म्यूजिक ऐसा का ऐसा उठाएं और इसको अपने गाने के बेड पे लगाएं और गाना चलाते जाएं।

फिलहाल के लिए डेफिनेटली नॉट दिस ट्रैक, लेकिन कमिंग अप अनदर वन आपके लिए, झूम जाओगे। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
1: जिनेलिया एंड रितेश, आप दोनों का तो झगड़ा होता ही नहीं होगा। जब झगड़ा ही नहीं होता रितेश देशमुख, आपको तो सॉरी बोलना ही नहीं पड़ता होगा।
2: सॉरी बोलना पड़ता है बिना झगड़ा किए?
3: अलार्म लगा है। ओ कॉल, हेलो जिनेलिया, सॉरी यार, टाइम हो गया, सॉरी।
2: नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, सॉरी बोलने का रोज एक टाइम होता है।
1: इन दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। ये थे रितेश एंड जिनेलिया देशमुख ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
1: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
2: बार बार
1: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन स्टेशन
3: 89.6
1: FM मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: जी बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
1: मैं जब भी आटा गूंथती हूँ तो आटा मेरे हाथ में चिपक जाता है, क्या करूँ?
0: हाथ में चिपक जाता है? सिंपल तो है, क्या क्या करूँ? पैर से आटा गूंथ, हाथ में नहीं चिपकेगा।
2: रख, रख।

0: 89.6 मिर्ची वन. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में बजने वाले हैं तीन.
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.
3: सारा जमाना सारा का दीवाना.
4: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची. It's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: हम आपके एक और एक ऐसी फिल्म है जिसको मैंने 175 बार देख लिया होगा और आज भी देयर इज अ डे जब मूड बनता है और हम एक दूसरे को कहते हैं हम आपके एक और देखे क्या
2: नब्बे की गप्पे।
1: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। देखो यार, जज करना है तो जज कर लो। मैं तो भाई हूँ सूरज भरजातिया फैन, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। और हम आपके कौन को इतनी बार देखने के बाद वर्ड टू वर्ड, डायलॉग टू डायलॉग और सीन टू सीन मुझे चीजें याद हैं। नाउ देयर इज अ सीन जब घर में खुशखबरी आती है, यानी कि बच्चे की किलकारी जो है वो सुनाई देती है। सब हॉस्पिटल में जो थिएटर होता है, ऑपरेशन थिएटर, उसके बाहर वेट कर रहे होते हैं कि कब बच्चे की किलकारी आए। और अधिकतना गाना वहीं से ही शुरू होता है, राइट। एंड जब डॉक्टर चाची जो है वो बाहर आती है और ये खबर सुनाती है कि लड़का हुआ है, एट दैट टाइम सलमान खान एकदम एक्साइटेड होकर हिमानी शिवपुरी को अपनी गोद में नहीं उठा लेते। दैट इज डॉक्टर चाची इन द मूवी हम आपके हैं कौन। उस वक्त दैट सीन वॉज एक्चुअली नॉट प्लान्ड, वो सलमान खान ने एकदम से कर दिया था। एंड हिमानी शिवपुरी का इस पर रिएक्शन ये था कि उन्होंने हल्के से ना सलमान खान को एक चाटा मार दिया था, बिकॉज वो चौंक गई एकदम से कि ये क्या हुआ। And she in an interview told कि you know सलमान खान was a prankster and you know ऐसी हरकतें वो कुछ ना कुछ करते ही रहते थे और ये भी एक वैसी ही सी हरकत थी। अब ये सारी चीजें जो है उस सीन में कैमरे पे कैप्चर हुई तो सूरज भरजातिया ने भी डिसाइड किया कि इस सीन को रखते हैं, हम इसमें टेक नहीं लेते हैं, बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये अच्छा लग रहा है। एंड एक्चुअली ये कितना अच्छा लग रहा है, आई एक्चुअली लव दिस सीन जब वो डॉक्टर चाची को गोद में उठा के बच्चे की तरह खिला रहे होते हैं। आज के जमाने में है कोई माइका लाल जो ऐसा कर सकता है? ना मुन्ना ना, बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: मिडडे मोहब्बत प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज, फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: Energy.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na viva la burga. Mirchi, burga.
2: Hello?
3: Hello, Mr. Gotham.
2: कौन बोल रहे हैं?
3: सर, मैं एक्चुअली आपसे ना वो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं आप सुना है फिर वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
2: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
3: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पोले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। सर नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
2: सर कुछ गाके सुनाएगा?
3: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर, वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
2: अरे एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके और मैं एड्रेस देता हूँ, उसको भेज दो।
3: वही सर, है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
2: कौन से गाने हैं
3: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। मैं एक पेशकश कर रहा हूँ, तन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बताए बांसुरिया। सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा।
2: सुन ले बात सुन पहले। और बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
3: सर, बोलिए।
2: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
3: जी सर।
2: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
4: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया, मुर्गा बन गया आपका।

0: Blade ke saath, only on Mirchi. It's hot.
1: Yep, attack.
2: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
0: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
3: दोनों मिलेगा, मिलेगा।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन
5: 89.6
6: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: डियर आजकल के जमाने के नेम लेबल और हमारे टाइम में स्टिकर कहलाने वाले
2: यादों को चिट्ठी।
1: आज स्टेशनरी देखती हूँ ना तो चौंक जाती हूँ। आजकल तुम्हें पता है जो तुम्हारी आज की पीढ़ी है उन पर तो नाम लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उन पर नाम टाइप्ड ही आते हैं मेड टू ऑर्डर। लेकिन बैक इन आवर स्कूल टाइम्स, स्कूल खुलने से पहले इट यूज्ड टू बी अ टास्क कि हम मम्मा के साथ बैठकर अपनी बुक्स और कॉपीज पर कवर चढ़ाया करते थे, फिर उसके बाद तुम्हें चेरी ऑन द टॉप की तरह बुक्स पर लगाया करते थे, और फिर लास्ट लेग होता था सब किताबों पर हमारा नाम, क्लास और सेक्शंस लिखे जाना। और तुम होते भी तो कितनी वैरायटी के थे यार, कहीं फ्लावर्स वाले तो कहीं कार्टून्स वाले। और बीटी तो तब होती जब स्कूल अपनी तरफ से बोरिंग वाले लेबल्स खरीदने को कंपल्सरी कर चुके थे, तब लगता था कि कितना काम है यार। लेकिन आज जो काम करते हैं उनके बीच लगता है कि यार वो भी क्या मस्त काम हुआ करता था जिसे हम कितनी सीरियसली लिया करते थे। एक दिन अपने फन के लिए आई डिसाइडेड कि आज मैं अपने नेफ्यू की किताबों पर कवर्स चढ़ाऊंगी और स्टिकर्स लगाऊंगी और उनपे उसका नाम, क्लास, सेक्शन ये सब लिखूंगी। मैं बड़ी एक्साइटेड थी इस काम को लेकर। फिर पता लगा कि मेरी भाभी ने तो किसी को पैसे देकर ये काम करवा लिया है और लेबल पर नाम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एवरीथिंग इज प्रिंटेड। सुन रहे हो, तुम्हारी आज की जनरेशन भी ना काफी तरक्की कर चुकी है, लेकिन मुझे फिर भी तुम पसंद हो। तुम्हें आज भी अपने ख्यालों में पढ़ती तुम्हारी सारा। एंड नाउ कमिंग अप अ ट्रैक जो आज तो प्यार मोहब्बत की याद दिलाता है, लेकिन ये डायलॉग हमने क्लास मॉनिटर्स से बहुत सुना है जब हम बातें खूब किया करते थे क्लास में, तो क्लास मॉनिटर्स यही कहा करते थे कि कुछ ना कहो। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Midday Mohabbat presented by Absolute Barbecues. From savory to sweet, experience the ultimate flavors at Absolute Barbecues.

0: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
1: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
2: बहुत कुछ होगा।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
5: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Oof, ये सवाल हम अक्सर प्यार से करते ही करते हैं. कौन सा सवाल? भाई कैसेट की साइड ए का दूसरा गाना.
2: मिर्ची 90s कैसेट.
1: सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में दिस नशीला गाना. बट डू यू नो, इस गाने की म्यूजिक की इंस्पिरेशन एग्जॉर्सिस्ट 2 मूवी की रीगन थीम से ली गई है. बट इजंट इट कूल कि पल में डराने वाली म्यूजिक को बड़ी खूबसूरती से प्यार में गिराने वाली म्यूजिक बना दिया. और ये काम करने वाले इंसान थे द म्यूजिक कंपोजर ऑफ दिस ट्रैक संदीप चौटा. और इस गाने में ना मुझे ये लाइन बहुत ऐप लगी कि पहली दफा उसे देखकर होने लगा कुछ ऐसा असर. खुद से हुई मैं बेखबर, मैं हूँ यहाँ, दिल मेरा है वहाँ. अरे अरे अरे अरे, आप कहाँ चल दिए? अभी तो ये गाना आपको पूरा सुनना है यार. तब इस गाने में गहराई से खो जाइएगा. पर पहले मेरा खुदा हाफिज कबूल तो करिए. तो इसी के साथ मैं आपसे कहती हूँ हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते. बाकी यहाँ के अलावा मैं आपको मिली जाती हूँ ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा. अपना ख्याल रखिएगा और हम फिर मिलेंगे. सेम प्लेस सेम टाइम बट नॉट द सेम डे. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
1: आमिर खान, आप तो परफेक्शनिस्ट हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। किरण राव के बारे में कोई ऐसी चीज बताइए जो हमें नहीं पता।
2: किरण जो है अपना करियर जो एक तरह से कह सकते हैं बिगेन एज रेडियो जॉकी। करीबन 1.5 साल तक उन्होंने शो संभाला।
3: बहुत साल पहले जब FM शुरू ही हुआ था हमें एक बहुत लेट नाइट शो दिया गया था, विकेड आवर था। बहुत मजा आता था, मैं खुद जो मुझे चाहिए था मैं बजाती थी और मजा करती थी स्टूडियो में।
1: और किरण जी, अगर आज हमने ऐसा कर लिया ना, हमारी तो जॉब गई हाथ से। आप सुन रहे हैं मिर्ची हिट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची हिट्स हॉट।
4: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
5: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
4: क्या बताओ यार, कंपनी इतनी टॉक्सिक हो गई है, मेरी टीम से सब लोग एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं, अब मैं अकेला ही बच गया हूँ, क्या करूं?
5: अरे मामू, तो तू छोड़ देना तो कंपनी से क्या टॉक्सिसिटी चली जाएगी।
6: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
7: यो

शाम शानदार only on 89.6 मिर्ची 1 कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का इट्स हॉट शाम शानदार brought to you by किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: आ गए आ गए आ गए अपने घर में वापस आ गए। मस्त मौला गौरव आपके साथ देवी और सजनों, बहुत दिनों के बाद फाइनली इवनिंग शो में लौटा हूँ। मिर्ची घड़ी की बात करूँ तो शाम के 4:03 से ज्यादा का समय हो रहा है।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: और यार चेंज इन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे कहते हैं ना चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट इन आवर लाइफ। तो पिछले दिनों मैं जब सुबह जल्दी उठकर जाने लगा ऑफिस आकर स्टूडियो में ढेर सारी बातें कर घर जाता था तो शाम को मेरे पास बहुत सारा टाइम होता था। हालांकि अब जिंदगी फिर से वही पुराने टाइम बैंड पर आ गई है जहां पर मैं शाम को शो कर रहा हूं। और मैं यही सोच रहा हूं कि ये चेंजेस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। मुझे अच्छे से याद है स्कूल में जब मेरे नंबर्स कम आते थे हम तुरंत टीचर चेंज करते थे क्योंकि हमें लगता था ये वाले टीचर कोचिंग में सही नहीं पढ़ाते, दूसरे टीचर से पढ़ते हैं। हमने अपने पढ़ाई का अंदाज नहीं चेंज किया, अगर वो किया होता तो शायद ये दिक्कत नहीं होती। फिलहाल मस्त बोलो गौरव आ गया ऐसी बातें लेकर 89.6 मिर्ची 1 पर। शाम शानदार की शुरुआत मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Escabana, uscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na vietva la burga. Milci, burga.
2: हेलो
3: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
2: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
3: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे वो उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
2: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
3: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
2: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, तो है ना, लाल रंग पेंट हुआ है।
3: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आप कहाँ खड़े हो पहले भी बताओ ना मेरे को।
2: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ। आप कैसे पैदल आ रहे हो?
3: मैं तो आ गया हूँ। जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
2: कौन कौन आ सकते, किसकी जिप्सी?
3: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
2: सर मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
3: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया फोन।
2: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
3: आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
2: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
3: आ गए, वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ियाँ आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो, जो रेड वेड मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है, मैं आपको पहले रहा हूँ।
2: मैं बाद में मिलूंगा आपसे, यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
3: किसकी डेथ हो गई सर?
2: वो मेरे भाई की डेथ हो गई।
3: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स फार्म में, आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नहीं है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
2: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसा हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रहे हो?
3: मैं कहाँ रहा हूँ,
2: सॉरी, आप अभी कहाँ रहो?
3: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
2: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने आ रहा है, परेशान हूँ मैं।
3: आशीष, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
2: यार।
3: थैंक यू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
6: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
4: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
7: 89.6
4: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: सारे कपड़े अगर नए दिख जाते हैं तो अपने वार्डरोब में ऐड करते हो, जब ऐप पे कोई नई डिजिटल सर्विस आए तो उसको भी ऐड करो ना। ऐसे ही कुछ न्यू फीचर्स के साथ अब आपको हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन का लबे ऐप मिल रहा है।
1: #974974
0: के लबे मोबाइल एप्लीकेशन पर अब कुछ नए डिजिटल फीचर्स जो है वो लॉन्च किए गए हैं, एंड ये बेसिकली आपके वेटिंग टाइम को और कम करेगा और आपके एज अ पेशेंट हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन में एक्सपीरियंस को बेहतरीन करेगा। याद रखिए, अब आप इस ऐप के जरिए अपनी शेड्यूल विजिट से 48 घंटे पहले अपॉइंटमेंट कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि 48 घंटे वाला विंडो स्टार्ट होने के बाद ऐप से कैंसिलेशन या रीशेड्यूलिंग बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो अगर 48 आवर्स लास्ट पहुंच गए हैं तो वहां पर आपको अपनी अपॉइंटमेंट को कंफर्म ही करना होगा। अगर इस पीरियड के दौरान कैंसिल रीशेड्यूल करना है तो डायरेक्टली आपको नेस्मार्क 160160 पे कॉल करना पड़ेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट रेसिडेंट्स के लिए भी अलाउ कर दी गई है। रेसिडेंट्स अब ऐप से डायरेक्ट ऑनलाइन फीस पे कर सकते हैं और हार्ट हॉस्पिटल, अलवकर हॉस्पिटल, कम्युनिकेबल डिजीज सेंटर, इन सब जगहों पर यह फर्स्ट फेज में इन सारी एप्लीकेशन सर्विसेज को लॉन्च किया जा रहा है। वेल, तैयार हो जाइए, अब आपको लबे ऐप पर मिलने वाली है ये कुछ नई फैसिलिटीज एज अ फीचर जो कि आपके एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाएगी। एंड जिस तरह से हर चीज डिजिटलाइज हो रही है उसके लिए यहां की हुकूमत को दिल से सलाम। क्या अब आपको काउंटर पे जाके पेमेंट भी नहीं करना भाई, वो भी मोबाइल पे हो गई। सीधे जाइए, अपॉइंटमेंट लीजिए डॉक्टर के पास। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: क्या आप छुट्टी पे नहीं गए लेकिन एक शॉर्ट ट्रिप पे जाना चाहते हैं?
1: मस्त मौला गौरव।
0: तो ऑब्वियसली मतलब आपने छुट्टी नहीं प्लान की है लेकिन आप एक शॉर्ट ट्रिप प्लान कर रहे हैं और वो भी भूसामरा बॉर्डर के थ्रू, तो हम वहाँ पर थोड़ा सा आपका टाइम और बचा देते हैं ताकि आप फुल एंजॉय कर पाओ अपनी शॉर्ट ट्रिप पर। यस, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने अर्ज किया उन सारे ट्रैवलर से जो भूसामरा बॉर्डर के थ्रू कहीं भी प्लान कर रहे हैं अपने शॉर्ट ट्रिप वेकेशन के लिए, उनको प्री रजिस्ट्रेशन करना है मित्राश ऐप पर, जिससे कि उनका ट्रैवल टाइम जो है वो बच जाए। क्योंकि याद रखिए आपके बॉर्डर पर जो समय लग रहा है ना उसको स्पीड अप करता है अगर आप मित्राश पर प्री रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। इसमें आपको कहीं ना कहीं फायदा हो जाता है, आप कंजेशन का हिस्सा नहीं बनते, आप ऑनलाइन में लगते और आपके पास जल्दी से बॉर्डर पार करने का मौका मिल जाता है। पीक हॉलीडे सीजन चल रहा है, ऑलमोस्ट सब लोग इसी सोच के साथ जा रहा है कि चलो बॉर्डर पे जाके कर लेंगे। ऐसे में आप अगर इलेक्ट्रॉनिक प्री रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको सिर्फ सबमिट करनी अपनी ट्रिप डिटेल्स एंड कुछ रिक्वायर्ड प्रोसीजर जो है वो पूरे करते ही आप बॉर्डर आराम से क्रॉस कर लेंगे। तो जितनी जल्दी हो सके अपनी इन्फॉर्मेशन एडवांस में ही इस डिजिटल प्री रजिस्ट्रेशन पे करा लो ताकि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम आराम से एंजॉय कर पाओ और बॉर्डर पर आपको इतना टाइम स्पेंड ना करना पड़े जो बिना प्री रजिस्ट्रेशन किए गए लोग जाकर कर रहे हैं। 89.6 मिर्ची व्हाट्स हॉट
2: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
2: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
3: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा,
4: खूब मिलेगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: हमारे यार सूरज चाचू बड़ा कंफ्यूज करते हो यार। खिड़की बंद रहे और एसी चलता रहे, बाहर देखो तो सुबह सवेरे ऐसी बदली, ऐसे बादल लगा यार, कितना खूबसूरत मौसम है। बाहर निकलते ही ह्यूमिडिटी का प्रकोप।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: जैसे मौसम ना हो गए आप हाथी के दांत हो गए, खाने के और दिखाने के और हैं जी। फिलहाल दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर पहुंचा 41 डिग्री सेल्सियस पर और दिन का मिनिमम आएगा 32। कुल मिलाकर जबरदस्त ह्यूमिडिटी ने हम सबको आज ये तो बता दिया है कि आने वाले टाइम में ह्यूमिडिटी और कितनी ज्यादा लगने वाली है। 37% ह्यूमिडिटी का टेम्परेचर, वहीं हवाएं 15 किलोमीटर के आसपास चलती हुई। पर बड़ी बात यह है कि अगले कुछ दिनों तक टेम्परेचर अब 41, 42 के आसपास ही रहेगा। तो घबराना नहीं है, पानी पी के सूरज चाचू को कोसते रहना है जिससे कि अगस्त आ जाए और जैसे ही सितंबर आएगा दिखेगा कैसे अक्टूबर मौसम ठीक हो जाएगा, नवंबर तक ठंड और दिसंबर में तो एकदम कड़कड़ाती सर्दी। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स मिर्ची हेल्पलाइन बोलिए।
0: मेरी ऑफिस में मेरे से बेवकूफ लोगों को ज्यादा सैलरी मिलती है, क्या करूँ?
1: ओ माय बॉय, तो तू ये सोच कि असली बेवकूफ कौन हुआ?
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: शाम शानदार only on 89.6 मिर्ची 1 कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का इट्स हॉट शाम शानदार brought to you by KIMS Health Medical Center
1: मिर्ची के स्टूडियो क्लॉक का टाइम शाम के 5 और मेरे साथ चल रहा है मेरा शो शाम शानदार
0: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर

ये होती है ना खुशखबरी। गुड मॉर्निंग मिर्ची मॉर्निंग्स पर आपके साथ है मस्त मौला गौरव, और ये खबर साउथ कोरिया से आ रही है जो हम सबको सुकून दे सकती है। यस, साउथ कोरिया ने एक ऐसा डिवाइस बना लिया है जो कि सी वाटर को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट कर सकता है यूजिंग नथिंग, यानी कि उसके बदले में से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सनलाइट चाहिए। सोचिए, सूरज चाचू की रोशनी जो कि एकदम गर्मा गर्म है आजकल, उसकी वजह से अगर आपको सेफ ड्रिंकिंग क्लीन वाटर मिल जाए तो क्या चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी की कोई जरूरत नहीं है, नो केमिकल इज रिक्वायर्ड, नो पावर ग्रिड, नथिंग, सिर्फ और सिर्फ ये समुद्र का पानी आराम से सूरज चाचू की देखरेख में आपके लिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर बन जाएगा। हाँ जी, यहाँ पर एक स्पेशल सरफेस कोटिंग होगी जो कि 97% सन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी और फिर 80 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेगी और फिर इवेपोरेट कर सी वाटर बहुत ही तेजी से एक कॉटन एंड दूसरे फिल्टर के थ्रू सीधे क्लीन वाटर बन जाएगा और ये स्ट्रॉ से बकायदा खींच कर निकाला जाएगा, जो कि आने वाले कई सदियों की बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। अगर ऐसा है और इन साइंटिस्ट ने मेहनत की है तो सबसे पहले इनको कुनाफा बकलावा खिलाया जाए। और आने वाले दौर में दुनिया के हर जगह पर पानी होगा, ये हम कह सकते हैं। और भाई, मैं सारे साइंटिस्ट लोगों से कहूंगा जो आने वाले टाइम की हमारी मुसीबतें हैं उनको कम करने के लिए आप जैसा कर सकते हैं प्लीज करिए, क्योंकि हम लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है कि इसी जन्म में सारी प्रॉब्लम्स देखने की। 89.6 मिर्ची 1, थैंक यू टू ऑल दी साइंटिस्ट, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Gambana. Burga, burga. La vizba la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: Hello, Ben ji.
2: हाँ जी.
3: ये एक सेकंड. ये बहन जी, हम आपके पड़ोस में रहते हैं. ये मेरा एक्चुअली बच्चा बहुत रो रहा है और मेरी वाइफ का फोन लग नहीं रहा है. वो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है. अगर
2: आपके घर में कोई नहीं है?
3: नहीं, वाइफ है, वो गई हुई है कहीं. तो आप थोड़ा सा, आपको अगर कुछ मालूम हो तो. एक सेकंड बेटा, चुप.
2: आप अपनी वाइफ को फोन करिए ना, उन्हें बुलवाइए जल्दी.
3: नहीं नहीं, मैं उनको ही फोन कर रहा हूँ. एक सेकंड. आली है मामा आएंगी, मामा आएंगी. एक सेकंड बहन जी, आप होल्ड करेंगी? एक सेकंड सर. आएंगी मामा, आएंगी, चीजी लाएंगी बेटा, चीजी लाएंगी. नहीं, चुप हो रहा. आई एम सो सॉरी, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं ऐसे.
2: नहीं, इसने डायपर पहना है तो चेक करिए, गीला तो नहीं है.
3: एक सेकंड, इधर आओ. हाँ, इधर आओ. देखो मामा आ गई, चीजी लाई. हाँ, डायपर गीला है बहन जी इसका.
2: उतार लीजिए.
3: एक सेकंड रुकिए. ये इसके गले में अटक रहा है डायपर. एक सेकंड.
2: शायद आप बेब उतार रहे हैं उसका.
3: अच्छा, ये बेब है. एक सेकंड.
2: देखिए, सुसु करा होगा उसने. देखिए.
3: हाँ, सुसु करा. चुप.
2: उतार दीजिए.
3: एक सेकंड. उतार दिया. मैं जी, मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा कह देंगे, मैं स्पीकर फोन पे लगा देता हूँ, शायद आपकी आवाज से समझ आ जरा. देखो आंटी कर रही
2: है.
3: क्लैपिंग करो.
2: चुप हो जाओ, पेट दर्द वगैरह ना हो, आप इसको डॉक्टर के पास लेकर जाइए.
3: हाँ, मुझे भी वही याद आ रहा है. नहीं बहन जी, आप सही कह रही हैं. रात को ना इसने वो मुर्गा खा लिया था, जिससे पेट में दर्द हो जाता है और थोड़े बहुत कान खराब हो जाते हैं. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने आपका नंबर डायल किया.
2: और मैं पागल हूँ. ओह नो.
3: अब जरा मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए एक बार.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
5: Ja Simran, ja jeere apni zindagi. Ja beta, ja.
6: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने.
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: इश्क जैसा कुछ, ये गाना यहाँ सुना दिया आपको किसने? विशाल शेखर शिल्पा राव की आवाज में। मस्त मौला गौरव। लेकिन इस घंटे हम जिस चीज जैसा कुछ खेलते हैं उसे कहते हैं
1: पहचान कौन।
0: पहचान कौन में खेल बड़ा ही सिंपल है, एक आवाज सुनाई देगी, आपको बताना है ये किस एक्टर की ये आवाज है।
2: हम लोग शूटिंग कर रहे थे, ऐसे हम लोग सब बैठे हुए थे, तो अनिल कपूर जी किसी होटल में रुके थे, हम किसी और होटल में रुके, हम लोग ऐसे बैठ के बातें कर रहे थे, तो चलो यार कुछ करते रहे, अनिल को फोन लगाना।
0: हम लोग बैठ के ऐसे ही बस मस्ती कर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे। ये आवाज आपको जानी पहचानी लग रही होगी, लग रहा होगा अम्मा यार ये तो सुनी आवाज है, तो इसीलिए तो हम आपको सुना रहे हैं और बोल रहे हैं पहचान कौन किसकी आवाज है।
2: हम लोग शूटिंग कर रहे थे, ऐसे हम लोग सब बैठे हुए थे, तो अनिल कपूर जी किसी होटल में रुके थे, हम किसी और होटल में रुके, हम लोग ऐसे बैठ के बातें कर रहे थे, तो चलो यार कुछ करते रहे, अनिल को फोन लगाना।
0: अनिल को फोन लगाना, ये आवाज किसकी है? 5000 1896 पर अगर आप अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर ड्राइव करें तो ड्राइव सेफ, कोई नहीं, आपका रिटर्न आंसर भी मैं यहां पढ़ दूंगा। प्लीज सेंड इन वॉइस नोट, अगर लेकिन किसी इमरजेंसी के चलते वॉइस नोट नहीं कर सकते तो नो प्रॉब्लम, यू कैन सेंड मी बाय राइटिंग द नेम ऑफ द एक्टर जिसकी आवाज मैंने यहां अभी प्ले की है, एंड इंतजार कर रहा हूं मैं आपके जवाबों का। मिर्ची पर अगला गाना है।

0: She can already read what's on your mind. She knows what you are thinking. Coming soon. Stay tuned. Stay tuned. कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है। क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
1: तो इंतजार खत्म। RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
0: अभी कॉल करें 3100813।
2: अरे यार, इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
3: क्योंकि मैंने रिचार्ज किया ओरेडो के योर स्पेशल ऑफर से।
2: योर स्पेशल ऑफर?
3: हाँ, ये रिचार्ज मेरे हाला नंबर के लिए स्पेशली बना हुआ ऑफर है। ज्यादा वैल्यू और वो बेनिफिट जो मुझे एक्चुअली चाहिए।
2: ये तो मेरे नॉर्मल रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
3: बिल्कुल, योर स्पेशल ऑफर मेरे लिए सबसे अच्छा रिचार्ज ऑप्शन है।
2: ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बना है खास आपके लिए। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
4: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
5: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
6: आएंगे दीदी, आएंगे
0: दीदी। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
8: गोली मार भेजे मैं, ये भेजा शोर करता है।

0: एनर्जेटिक सॉन्ग विशाल मिश्रा राहुल सिपली गुंज क्या मिलके जवाब देके गाना गाए हो भैया नाटो नाटो इसका जो वर्जन था असली वाला उसने ऑस्कर तक जीत लिया। चलिए जी फिलहाल मस्त मौला गौरव आपके साथ है। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया था और कहा था कि पहचान कौन में आज जो आवाज आपको पहचाननी है वो कुछ यूं आएगी और आपको बताना है ये किस एक्टर की आवाज है।
1: हम लोग शूटिंग कर रहे थे ऐसे हम लोग बैठे हुए थे तो अनिल कपूर जी किसी होटल में रुके थे हम किसी और होटल में रुके हम लोग ऐसे बैठ के बातें कर रहे थे तो चलो यार कुछ करते अरे अनिल अनिल अनिल को फोन लगाना।
0: बस अनिल को फोन लगा ये किसने बोला है मैंने आज आपसे यही सवाल पूछा है एंड बहुत सारे लोगों ने जवाब दे दिया है। अब लेकिन जो जवाब आया है वो सही है गलत है इसके लिए तो आप लोग खुद सुन लो ये क्या जवाब है।
2: हाँ जी सर गुड इवनिंग सर ये जानी लीवर है सर मैं राम दिनेश यादव बोल रहा हूँ।
3: जॉनी लीवर
4: हाय गौरव प्रदीप हियर।
0: हाँ जी
4: आई थिंक वो आवाज जो आपने सुना है वो द ग्रेट जॉनी लीवर जी की आवाज है।
0: थैंक यू बाय।
5: हाय दिस इज साइमा हियर।
0: हाय साइमा
5: ये आवाज जॉनी लीवर की है।
6: सर जी जो आपने अभी आवाज सुनाई वो जॉनी लीवर साहब की है।
7: अस्सलाम
0: वालेकुम।
7: मैं मोहम्मद शकील पाकिस्तान लाहौर से
0: जी जी
7: और इसका जवाब है जॉनी लीवर। ये जॉनी लीवर की आवाज़ थी
0: जी जी
7: शायद जॉनी लीवर। आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा आता है आप लोग सब बहुत ही ज़्यादा
0: बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप ही लोगों के लिए प्रोग्राम करते हैं और अगर आपको पसंद आ रहा है माशाल्लाह इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। बस हमारे बॉस ये सब सुन रहे हैं और कह देंगे गौरव जा कल से तेरी तनख्वाह दोगुनी 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।
8: बुलावे तुझे यार आज मेरी गलियां बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया।
0: इससे पहले मैं भूल जाऊं यस जॉनी लीवर इज द राइट आंसर।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: प्रियंका चोपड़ा, आपने विशाल भारद्वाज के साथ दो फिल्में की हैं, देयर इज सात खून माफ, देयर इज कमीने। आप दोनों की जुगलबंदी को देख के लगता है कि बहुत मजे आते होंगे सेट पे।
3: हाँ, लगता ही है। He's the kind of director, as an actor, you have to really trust him. Because he is, his ideas come from where you never understand. And if you start justifying it, जैसे अगर उन्होंने कुछ बोल दिया, जैसे कि you know, तुम यहाँ पे सीढ़ियों से आ रही हो, अगर मैं सोचने लगी कि मैं सीढ़ियों से क्यों आऊंगी, तो फिर तो मतलब आपकी कभी नहीं बनेगी. But you have to trust him.
2: ये थी प्रियंका चोपड़ा talking about विशाल भारद्वाज on मिर्ची It's Hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on मिर्ची It's Hot.
4: शाम शानदार, brought to you by KIMS Health Medical Center.
5: Our business is our business, none of your business.
6: पर दीदी, our entertainment is your entertainment. Entertainment,
4: entertainment. Qatar का number one radio station.
7: 89.6
8: FM, Mirchi 1. It's hot.

आपको ऐसा भी कभी कभी लगता होगा कोई दोस्त जब आके कहता है अभी तूने कितने का लिया, मैंने तो तेरे से सस्ता लिया, और आपको लगता है ले आप लूट गए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका वो दोस्त महंगा लिया हो लेकिन आपके सामने सस्ता खरीदने की एक्टिंग कर रहा हो, बेसिकली वो लूटा हो। मैं ऐसे कंफ्यूजन में ना बहुत रहता हूँ। वैसे फिलहाल के लिए 89.6 मिर्ची 1 पर आपके साथ और इतना ही कहना चाहता हूँ देवी और सज्जनों, बहुत ही आनंद आ रहा है अगर आपको इस वक्त अच्छे पैसे घर भेजने हैं तो। अगर बात करें तो इस वक्त 1 कतरी रियाल के बदले मिलने वाले इंडियन रुपीज हैं पूरे के पूरे, यस 26.30, 26.30 भारतीय मुद्रा। वही 1 कतरी रियाल के बदले मिलने वाले पाकिस्तानी रुपीज 76.35, 76.35। लंकन रुपीज की बात करें अगेंस्ट 1 कतरी रियाल 92.26। तपाई को नेपाली रुपीज का रेट छता जो 41.96 का भालचा रेट था, यहाँ जी 41.96 को नेपाली रुपीज का रेट छता है। अगर इसके बाद हम बात करेगा बंधु बांग्लादेशी टका का तो 33.98 बांग्लादेशी टका का रेट है। मस्त बोलो गौरव के साथ। अगर आप याद कर रहे हैं कि आगे और क्या क्या बहुत सारी चीजें हैं, फिलहाल के लिए यार रहमान के गाने को याद कीजिए कि किस ब्यूटी से वो गाते हैं मिर्ची।

0: Mirchi Helpline?
1: या मिर्ची हेल्पलाइन बताओ क्या प्रॉब्लम है हु?
0: जब भी मैं मॉल में शॉपिंग करने जाता हूँ एक चीज लेनी होती है पांच लेके आ जाता हूँ क्या करूँ?
1: ये तो गलत है हु? अगली बार से एक ही लाना क्योंकि पांच लेकर पकड़े जाओगे हु? तो मॉल वाले चोर समझकर मारेंगे।

0: शाम शानदार ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का, इट्स हॉट। शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: दाढ़ी पे जो हाथ फेरे सारी दुनिया हिले।

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: वेल, फिलहाल के लिए तबाही नहीं भैया, हम तो अच्छी बातें करने आते हैं। मेरा नाम ही मेरे भाई मस्त मौला गौरव, एंड यस मिर्ची घर के टाइम 6:08 से ज्यादा।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
1: एंड जब आ गया हूँ आपके साथ तो बातों की बात शुरू करता हूँ जनाब। एक बार फिर से कॉन्टेस्ट की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि एक ऐसी बात पढ़ी कि दिल में मेरे भी आंसू छलक उठे। यस, मूवी थी बटवारा 1947, इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ और फिर क्या था, रो पड़े स्टेज पर अपने पापा धर्मेंद्र जी को याद करते हुए सनी देओल, एंड पूरे के पूरे इवेंट में लोग जो थे वो इमोशनल हो गए। यस, फिल्म बटवारा 1947 का ट्रेलर लॉन्च इवेंट था, सनी देओल जब यहाँ रोने लगे बाकी लोग भी इनकी तरफ देखने लगे। वेल, बता दें राजकुमार संतोषी साहब इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, इनकी और सनी देओल की जोड़ी किसी से छुपाई नहीं छुपी है, बेहतरीन डायरेक्टर एंड एक्टर की जोड़ी है। एंड ऐसे में जब धर्मेंद्र जी की बातें सुनकर सनी देओल की आंखों में आंसू आए तो सभी लोग सेट पर जो वहाँ उस समय खड़े थे सबको लगा यार क्या ही हो गया, लेकिन सब कह रहे हैं फिल्म सुपर डुपर हिट होगी। वेल, अब देखना पड़ेगा जब फिल्म आएगी तब। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूं, सनी देओल, बॉबी देओल एंड उनके पापा धर्मेंद्र जी यानी कि धर्मेंद्र देओल जी, ये तीनों एक साथ जितनी ज्यादा आप फिल्में बता सकते हैं वॉइस नोट बताइए, गौरव फना फिल्म, इस फिल्म, इस फिल्म, ये तीन फिल्में, ये चार फिल्में बताइए, तीनों यानी कि पापा और बेटों की जोड़ी किन किन फिल्मों में साथ दिखाई दी है। 5001896 पर मस्त मौला गौरव आज के सवाल पूछ रहा है, अगली बार मैं जवाब के साथ लौटूंगा। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, सनी देओल, बॉबी देओल विद डैड धर्मेंद्र जी किन किन फिल्मों में नजर आए हैं। 5001896 पर मस्त मौला गौरव आपके साथ, टिंकू जल्दी जल्दी बताओ, ये एक हिंट था। 5001896 पर मस्त मौला गौरव इंतजार कर रहा है, सनी देओल, बॉबी देओल, धर्मेंद्र जी कितनी फिल्में साथ में की है, नाम गिना दो। 5001896 पर वॉइस नोट अपना जवाब भेजो मिर्जी पर।

0: Mirchi. Escabana, pues cabana, sacabana.
1: ¡Cabana!
0: ¡Murga, murga! ¡La jefa la murga!
1: ¡Mirchi, murga!
2: Hello.
3: Hello, Mr. Gotham.
2: Good
3: morning. Sir, may I actually ask sir, about the request करना चाहिए मैं सर आप सुना आप वो singing winging सिखाते हैं सर तो सर गाने का थोड़ा शौक है मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े different होते हैं
2: कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं
3: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था तो स्नेक का ही घुस गया था तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू आजा स्नेक निकाल दे सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर हर तरह के गाने खा लेता हूँ लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में सर नागिन क्या है सर नगीना फिल्म देखी आपने नगीना फिल्म देखी है सर आपने
2: सर कुछ गा के सुनाएगा
3: हाँ वही सर नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर वो देखा है ना कोंडा आपने ना कोंडा फिल्म देखी है
2: अरे एक काम करो अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ उसको
3: भेज दो वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को
2: कौन से गाने
3: सर वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज़ वो उसके अच्छे लगते हैं उसने काम किया ना कोंडा में यही बात है मेरे लिए एक पेशकश कर रहा हूँ तन डोले मेरा मन डोले मेरे गले का गया गुजार रे कौन बजाए बांसुरिया सर बिच्छू वाला ये बिच्छू मुझे हाथ खाएगा
2: सुन ले बात करी
3: मेरी बात
2: हाँ सुन पहले बात
3: हाँ सर
2: और जब बंद करिए बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
3: है सर बोलिए
2: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते समझ गया ना तू बात
3: जी सर
2: और जिसने तुझे नंबर दिया है क्या किसने नंबर दिया था तुझे
4: मिस्टर गौतम इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं बहुत मुश्किल से मिलता है मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता आप रेडियो मिर्ची पे हैं दिल्ली आपको सुन रही है छोटा सा मजाक किया मुर्गा बन गया आपका

0: Mercy Morga na Vétke Szát. Only on Mercy. It's hot.
1: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
2: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
3: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
4: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
7: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: गुल्ली मचा, गुल्ली गुल्ली मचा गाना सुनाया किसने? मचा
1: मस्त मौला गौरव
0: 89.6 मिर्ची वन पर मस्त मौला गौरव आपके साथ। देवी और सजनों, सवाल किया था आपसे थोड़ी देर पहले कि सनी देओल, पापा धर्मेंद्र देओल और बॉबी देओल तीनों ने एक साथ कितनी फिल्मों में काम किया है, क्योंकि अभी फिल्म बंटवारा 1947 का एक तरह से एक लॉन्च था जो कि राजकुमार संतोषी जी ने ऑर्गेनाइज किया था। सारे के सारे फिल्म के कास्ट थे एंड सब बैठे हुए थे साथ में, और सनी देओल अचानक इमोशनल हो गए जब उनके फादर की बात आई। फिर क्या था, मैंने कहा यहीं पर सवाल पूछ लेते हैं कि बताइए धर्मेंद्र, बॉबी देओल एंड सनी देओल जी एक साथ कितनी फिल्मों में नजर आए हैं। अब देखिए अपने मिर्ची लिसनर्स हैं, ये मौका छोड़ते नहीं, जैसे इनको याद आता फटाफट बताएं। सबसे पहले बताएं,
2: हाय गौरव, हाउ आर यू? आई थिंक यमला पगला दीवाना 2 अपने अपने तो अपने होते हैं। ऑल ऑफ दीज मूवीज आई थिंक सनी देओल, धर्मेंद्र एंड बॉबी देओल प्ले टुगेदर। थैंक यू,
0: थैंक यू भाई। वेल, ये बिल्कुल सही जवाब है। यस, एक और जवाब जो मैंने एकदम सही पाया है उसके बारे में जरूर बताऊंगा। इट्स अपने यमला पगला दीवाना 1, 2, 3 एंड दिस इज बाय, भाई साहब आपका नाम लग रहा है आपने भूल गए, ये मैं ए कल भी बता रहा था, आज भी बोल रहा हूँ ए, मैं फिर भी कोशिश करूँगा थोड़ा ऊपर देख लूँ। हाँ जी, आपका नाम जा रहा हूँ ऊपर, देखने में तो नहीं दिख रहा है, बट यस बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने भी। इट्स यमला पगला दीवाना 1, 2, 3 एंड साथ ही साथ अपने, एंड फिलहाल सनी देओल एंड बॉबी देओल एक साथ एक और फिल्म में नजर आए थे, उस फिल्म का नाम था दिल लगी, जो सबसे पहले दोनों भाइयों की जोड़ी में आया था। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: धक धक धक धक धड़के ये दिल है जी, हमारे कतर के लिए भी हमारा दिल धड़कता तो है। सब कुछ अच्छा होता है तो हम और ज्यादा खुश होते हैं, हमें लगता है यार कितना अच्छा हो रहा है और ये पूरी दुनिया में क्यों नहीं हो रहा है। वेल, फिलहाल एक ऐसी अच्छी चीज की है पब्लिक वर्क्स अथॉरिटी आजकल ने हमारे कतर में मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट जो है उसको रिसाइकल किया गया है। यस, हम बता दें एक जबरदस्त इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया गया है ताकि मैनेज कर पाए, रिसाइकल कर पाए उस सारे कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट को जो कतर में अलग अलग जगहों पर होता है। ये एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, वेस्ट को रिड्यूस करेगा और कहीं ना कहीं कतर का वो जो कतर नेशनल विजन 2030 है ना उसे नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के साथ अलाइन कर आगे बढ़ जाएगा। बिल्कुल मिलाकर इतना कहना चाहता हूँ, 300,000 टन्स ऑफ CND वेस्ट, कंस्ट्रक्शन का जो वेस्ट होता है ना उसको यूज किया है, जो डिमोलिश कर दी जाती है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, उस वेस्ट को यूज कर बहुत सारा रिसाइकल प्रोडक्ट बना है। एंड 300,000 टन्स जो है उसमें सबसे ज्यादा था 80,000 टन्स ऑफ वुड वेस्ट। यस, कह सकते हैं अजगाल की बहुत सारी डेवलपमेंट साइट पर जो वुड का वेस्ट था, लकड़ी का, वो उसके अलावा 7,000 टन्स ऑफ डाइवर्टिंग प्लास्टिक वेस्ट, वो सड़कों पर आप देखते हैं ना बड़े बड़े यू नो डाइवर्जन लगे रहते हैं डिवाइडर की तरह प्लास्टिक के बड़े बड़े, उनका 7,000 वो था। 3,000 टन्स ऑफ पेपर वेस्ट एंड 1,000 टन्स ऑफ स्क्रैप मेटल, इन सबको रिसाइकलिंग फैसिलिटीज भेजा गया, वहां पर इसे फिर से रीयूजेबल बनाया गया और इस तरह से कतर अपना काम कर रहा। और सबसे खूबसूरती से अजगाल ये बात सुनकर हमें लगता है यार ये 300,000 टन्स को रीयूज कर रहे हैं, हमारे घर में 3 किलो प्लास्टिक आ जाता है हम उसको फटाफट से कहते हैं फेंक दो वेस्ट में, आप भी उसको रीयूज कर सकते हैं यार। मैं तो कहता हूं जब आप बाजार जाइए, कहीं भी सब्जी खरीदे, सुपरमार्केट, हाइपर मार्केट जा रहे हैं, घर से ही अपने वो प्लास्टिक बैग लेकर जाइए जो आपने लास्ट टाइम यूज किया था। इससे आप एक छोटी सी अपनी तरफ की कोशिश करेंगे जिससे कि आने वाले टाइम में बच्चे भी अच्छी आदतें सीखेंगे। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, brought to you by KIMS Health Medical Center.

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल, सीधा, नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5, 10, 15, 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईपी, स्मॉलर फीस, बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई.
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते. जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है.
2: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: का याद देख दिल मेरा चुराया क्यों यार, ये 90s के गाने ना अपने आप में ही अलग हैं। लेकिन लगता है हमारा चैलेंज सूरज चाचू अपना लिए। आज मैंने कहा कि हाथी के दांत हो गए आपके, दिखाने के कुछ और खाने कुछ और, बादल दिखाते हो बारिश नहीं कराते हो और ऊपर से ह्यूमिडिटी बढ़ाते हो, तो अब कह रहे पसीने की बारिश के बाद फाइनली बारिश के चांसेस हमारे कतर में आ गए। यस, कतर मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट का कहना है कि अगर सब कुछ सही रहा तो वेंसडे एंड थर्सडे यानी कि 29-30 जुलाई देयर आर अ लिटिल चांसेस ऑफ रेनफॉल यानी कि बारिश हो सकती है। और अगर ऐसा है तो ये तो कमाल होगा सर, धमाल होगा है। हम बहुत कम ऐसा मौका देखे जब जुलाई के महीने में बारिश हो, लेकिन मुझे अच्छे से याद है जिस साल फीफा वर्ल्ड कप था उस साल जुलाई की 1 तारीख पर बारिश हुई थी। इट वॉज अराउंड 2021 या मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं, पर आप अपनी स्टोरीज में जाके चेक कीजिएगा, मिर्ची की स्टोरीज में मैं जाके चेक करूंगा। जुलाई के महीने में बारिश हुई थी सुबह के टाइम, और क्या पता कल भी वो मौसम रिपीट हो जाए। 4 साल में एक बार ही सही, पर आएगी तो एंजॉय करेंगे और पकौड़े बनेंगे दोस्तों, क्योंकि बारिश बिना कनक और पकौड़ों के अधूरी है हमारे कतर में। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: विशाल भारद्वाज, आप फिल्म डायरेक्ट भी करते हैं, आप म्यूजिक भी देते हैं और आप गाना भी गाते हैं। कई लोग इंडस्ट्री में आपसे काफी खफा होंगे, उनका निवाला जो छीन लेते हैं आप, नहीं?
3: हमेशा एक आयरनी होती है कि शूटिंग से पहले मुझे गाने पूरे करने का टाइम नहीं मिलता है, तो सारे गाने मुझे खुद करके बाद में वॉइसेस चेंज करता हूँ। ऑल द मेंबर ऑफ माय यू नो टीम जैसे कि नहीं ये गाना भी आप गाओ ये गाना भी, बड़ा एम्बेरेसिंग मुझे लगता है। और सिंगर्स थे वो सब, जब मैं उनसे पार्टी में मिलता हूँ तो सब मुझे बोलते हैं कि यार ये हद हो गई यार, तुम गाने भी, तुम सारे गाने शुरू कर दिए। और मुझे मालूम है कि पीछे लगता होगा गाया जाता नहीं है, सांस पूरी आती नहीं है, फिर भी गाने में लगा हुआ है।
2: भाई हम तो कहेंगे थैंक यू उन गानों को बनाने के लिए, म्यूजिक देने के लिए और गाना गाने के लिए। दैट वाज विशाल भारद्वाज ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood Bollywood Bollywood Bollywood Bollywood
1: Bollywood Bollywood Only on Mirchi It's Hot।
4: अमुशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
5: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
1: बार बार।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
5: 89.6 FM Mirchi 1 It's hot।

0: बोल दामिनी बोल। बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
1: वो ना, वो पराठे गरम करते वक्त मैं कितना भी ध्यान रखूं, वो जल ही जाते हैं। और मेरी मम्मी इतना गुस्सा करती है, मैं क्या करूं?
0: क्या करूं का क्या मतलब है? जलने वाले तो जलेंगे, तू मम्मी को बोल के किचन में ना खड़ी रहे। सिंपल है।
2: खोपड़ी तोड़ दे।

शाम शानदार ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का इट्स हॉट शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: लाल लाल चल्लर ची बांगड़ी, क्या गाना है भाई, दिल खुश हो जाता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको सुनकर दिल दिमाग सब खुश हो जाता है। फिलहाल मिर्ची घड़ी का टाइम 7:04।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: इन सब के बीच मस्त मौला गौरव आपको बता दे कि ये बात सुनकर दिल गार्डन गार्डन है कि कल या परसों कतर में बारिश हो सकती है। कतर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने कह दिया है, लेकिन अब मेरी काली जबान ने कह दिया, इसलिए हो सकता है ना भी हो, तो बुरा नहीं मानना, पर गाड़ी नहीं धुलवानी है। दो दिन तक गाड़ी नहीं धुलवानी, तो कहोगे गौरव यार अच्छा खासा पैसा बचवा रहे थे तुम, हमने गलती कर दी। वैसे गलती तो आप कर देते हैं, जब मैं आपको समझाता हूं तो भी आप नहीं मानते, और अगली गलती करेंगे अगर आपने ये लबे ऐप पर अभी तक ये एप्लीकेशन में रिफ्रेश कर ये फैसिलिटीज का यूज नहीं किया। यस, HMC ने यहां पर कुछ नई डिजिटल सर्विसेज शुरू की है। लबे जो कि हमें मेडिकल कॉर्पोरेशन का ऐप है, उसमें बहुत सारी चीजें अब एनहेंस कर दी गई है, एंड इस पे जो सर्विसेज आई हैं उनमें अब आपको 48 आवर्स के विदिन अपॉइंटमेंट को कंफर्म करना है। इसके अलावा अब आप यहां पर ही पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हो, मतलब आप वहां सीधे जाओ डॉक्टर के पास, अपॉइंटमेंट लेकर चले जाओ, आपको वहां काउंटर पे पेमेंट की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन पेमेंट पे ऐप कर सकते हो। यस, ऐप पे पेमेंट कर सकते हो, और ये लबे ऐप पर ही सब हो रहा है, क्योंकि कुछ नए फीचर्स ऐड कर दिए गए इस ऐप पर। आई एम श्योर हमारे कतर में डिजिटलाइजेशन की जिस तरह की वैल्यू बढ़ रही है, ये सारी चीजें आने वाले टाइम में और आसान हो जाएंगी। थैंक यू टू गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्रीज जो लगातार हमारी चीजों के लिए आसान बना रही हैं। मिर्ची इट्स हॉट।

0: Biscuit Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Gabbana. Burka, burka. La virpa la burka. Mirchi burka.
2: Hello.
3: Hi, Shivani.
2: Hi.
3: Hi, Shivani. Congratulations. Mubarak ho. Gaadi khareed li.
2: Thank you very much. Aap kaun bol rahe hain?
3: Shivani, kaun si gaadi khareedi hai? Mujhe to abhi bataya. अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
2: समाचार?
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है. आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को. पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे अच्छा. टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई.
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ. शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था. एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा.
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी. अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है. तो कोई नई गाड़ी मुझे, वन सेकेंड, चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ. ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना. शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं है, इसको करना है. आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है.
3: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी.
2: आप सिर्फ मेरी बात खर्च के गाड़ी खरीद ले,
3: ये सिर्फ 3, अच्छा एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
2: सिर पे करवा ले
3: शिवानी.
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा. अच्छा मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन मत काटना. शिवानी मेरी बात सुनो,
2: नहीं
3: नहीं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज. अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कांग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार. ज़ोबी शराब, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना.
2: कुकड़ुकु
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट,
5: इट्स पटाक.
6: यार बजट टाइट है, शॉपिंग कैसे करें?
7: बजट टाइट तो लुलु फैशन स्टोर चलो.
6: क्यों, वहाँ क्या मैजिक हो रहा है?
7: मैजिक नहीं, हाफ पे बैक.
6: ओहो, एक्सप्लेन करो जरा.
7: सिंपल रेडीमेड गार्मेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग्स और बेबी एक्सेसरीज पे हाफ पे बैक.
6: मतलब 200 की शॉपिंग पे 100 वापस?
7: बिल्कुल, और वाउचर रिडीम भी इन्हीं कैटेगरीज में कर सकते हो.
6: ये हुई ना स्मार्ट शॉपिंग, लुलू फैशन स्टोर, हाफ पे बैक, शॉपिंग का स्मार्ट तरीका. स्पेंड QAR 200 एंड गेट QAR 100 फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली. लुलू फैशन स्टोर, लिमिटेड पीरियड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. लुलू, व्हेन द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.
8: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक.
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
4: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: अरिजीत सिंह एड शीरन की आवाज में सैफायर गाना सुनाया किसने? लेकिन अब जो सुनाने जा रहा हूँ बच्चों, ये तुम्हारे बहुत काम की चीज है। हमारे कतर में स्टे हेल्दी का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जनरल टैक्स अथॉरिटी एंड इन कोलैबोरेशन विद विजिट कतर। कतर टॉय फेस्टिवल में बकायदा हेलो समर कैंपेन के थ्रू बच्चों को बताया गया है कि किस तरह से शुगर कंजम्पशन को अपनी लाइफ में कम करना है। यस, ये इनिशिएटिव इसी एम के साथ आगे लाया गया है, बच्चों में अवेयरनेस रहे कितना रिस्क है अगर वो अपनी लाइफ में शुगर कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, उनको इसके बारे में बताइए। स्वीट एंड ड्रिंक्स हो या वो प्रोडक्ट जिनमें स्वीटनेस काफी ज्यादा भरी हो, ये सब आने वाले टाइम में उनके हेल्थ, कॉन्सेंट्रेशन, एनर्जी लेवल सब पर इंपैक्ट डालती है और इसी बात को वो आगे लेकर आए हैं। एंड आई एम श्योर GTA इन कोलैबोरेशन विजिट कतर ये एक ग्रेट इनिशिएटिव है क्योंकि बच्चे वाकई में अपने माँ बाप की तो नहीं सुनते लेकिन कोई और समझाए जी अंकल, यस अंकल, आई विल फॉलो अंकल व्हाट यू हैव सेड, ये जरूर करते हैं। तो चलो हम ना सही कोई और समझाएगा तो शायद बच्चों को समझ में आएगा, बट ट्रस्ट मी वाकई में एक बहुत बड़ी अवेयरनेस है जो बच्चों के अंदर हमें लानी है, ये चेतना जगानी है कि शुगर का कंजम्पशन अभी से उनकी लाइफ में कम हो ताकि बाद में उन्हें वाली प्रॉब्लम ना हो कि मिठाई सामने पड़ी है लेकिन खाने के लिए हम एकदम तड़प रहे हैं पर ये याद आ जाता है कि शुगर वाली दवा सुबह ही तो खाइए। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

नहीं, ये वाला काम तो मैंने अपनी मम्मी से बहुत सीखा है। नहीं, मेरी फटी जीन्स को मम्मी झोला बना देती थी, उसमें हम सब्जी लेके आ जाते थे। लेकिन फिलहाल हमारे कतर में ये काम बहुत खूबसूरती से अशगाल ने किया है। #974974 हम आपको बता दें, पब्लिक वर्क्स अथॉरिटी अशगाल ने एक तरह से अपने सारे पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ दिए और अपनी एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट की पॉलिसी बनाई थी कि जितना भी वेस्ट होगा, जो कि मिलियंस ऑफ टन्स होता है कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन का, सीएनडी का सारा वेस्ट वो रियूज करेंगे। और ऐसा कर नेशनल विजन 2030 को अलाइन करते हुए 300,000 टन इस्तेमाल किया है। यस, 300,000 tons of waste of construction and demolition को use किया गया। इसमें 80,000 ton of wood waste था, 7,000 tons of plastic waste, 3,000 tons of paper waste and 1,000 tons of scrap metal। इन सबको recycling facilities में भेजकर वापस से use किया, ताकि कतर का वो National Vision 2030 का जो target है कि हम लगातार चीजों को reuse करें, recycle कर उसको use करते रहे, उसे पूरा करें। इतना ही नहीं, after this 800,000 ऑफ फूड वेस्ट को भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट, बोले तो खाद बना दिया, ताकि कतर में ही उसका इस्तेमाल कर और अच्छे क्रॉप ग्रोइंग कराई जा सके। बताइए, कोई सोचता है अपने मुल्क में इतनी सारी बातें, लेकिन कतर हर चीज के बारे में सोचता है और कैसे ट्रैश से कैश बनाया जाए अपनी इकोनॉमी में, उसे बूस्ट किया जाए, इसका इस्तेमाल किया। इसके लिए जोरदार तालियां अशगाल के लिए। एंड मैं कहता हूं, कतर डिजर्व्स द बेस्ट, बट अशगाल के लिए तालियां डिजर्व्स द बेस्ट। एंड मस्ट मोला गौरव थैंक यू कहेगा उस पूरी टीम को जो इस तरह का काम करती है, ताकि कतर में रीयूज होकर वेस्ट का जो संख्या बल है वो कम होता रहे। 89.6 मिर्ची वन, आप अपनी वही पुरानी चीजों को फेंकना बंद कीजिए, आप भी ऐसे यूज कीजिए। चार डब्बे आ जाते, परेशान जाते, क्या करें, फेंक देते हैं। नहीं फेंकना है, यूज करो मिर्ची थॉट।

0: Bollywood Boulder. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
1: जिनेली एंड रितेश, आप दोनों का तो झगड़ा होता ही नहीं होगा। जब झगड़ा ही नहीं होता रितेश देशमुख, आपको तो सॉरी बोलना ही नहीं पड़ता होगा।
2: सॉरी बोलना पड़ता है बिना झगड़ा किए।
3: अलार्म लगा है। ओ गॉड, हेलो जिनेली, सॉरी यार, टाइम हो गया सॉरी।
2: नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि सॉरी बोलने का रोज एक टाइम होता है।
1: इन दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। ये थे रितेश एंड जिनेलिया देशमुख ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
5: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
6: कैसे रुक सकता है?
7: Qatar का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

अरे सब नैनो का ही तो कसूर है सर, पहली बार तो नजरें वहीं जाती हैं। अगर नजरें ना जाती तो फिर हमारे दिल में इच्छा ही नहीं जगती, और दिल में इच्छा नहीं जगती तो हम उस चीज को देखते ही नहीं, और देखते नहीं तो खाते नहीं, और खाते नहीं तो पछताते नहीं। तो ये सबसे पहला दोष नजर को ही जाता है। इसी उम्मीद में कि आपकी लाइफ में भी ऐसा होता है कि आप कुछ चीज देख लेते हैं, फिर मन जो है तड़पड़ाने लगता है, और फिर हाथ जो है फड़फड़ाने लगता है, आप उसकी तरफ बढ़ते हैं और जेब से पैसे ढीले कर तुरंत उसे खा लेते हैं। तो आप बिल्कुल मेरे दोस्त मेरे भाई हैं, कोई टेंशन मत लीजिए। लाइफ में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब लोग हमें सुनाते हैं कहमा यार कम खाया करो, पर वो ये नहीं समझ पाते कि हमारे साथ कितनी सारी दिक्कतें हैं, हम कितना मन को मारे हम ये नहीं समझ पाते हैं। इसी उम्मीद में कि अब मस्त बोलो गौरव ले रहा है अलविदा, लौटेगा कल शाम एक बार फिर से ढेर सारी मस्ती धमाल लेकर, आपको कर रहा है टाटा बाय। लेकिन ज्यादा मत सोचो मेरे भाई, जिंदगी एक ही बार तो मिली है, जम के जिएंगे और जम के खाएंगे पिएंगे। मिर्ची था टाटा बाय मस्त सलाम।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
0: मैं जब भी आटा गूंथती हूँ तो आटा मेरे हाथ में चिपक जाता है, क्या करूँ?
1: हाथ में चिपक जाता है? सिंपल तो है, क्या क्या करूँ? पैर से आटा गूंथ, हाथ में नहीं चिपकेगा।

0: 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
1: बज चुके हैं रात के 8, पुरानी जीन सुन रहे हैं आप मिर्ची पे।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। और जिंदगी से कोई शख्स चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन उसकी याद चली जाए ओहो हो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जलील अली साहब का शेर है आपकी नजर किया कि दिल आबाद कहां रह पाए उसकी याद भुला देने से, दिल आबाद कहां रह पाए उसकी याद भुला देने से, कमरा वीरा हो जाता है एक तस्वीर हटा देने से। आय हाय हाय हाय कितना सच है कि शख्स चला जाए बिल्कुल, लेकिन उसकी याद की एक दुनिया जो पलती रहती है आपके जहन में, एक दिन जब आप उसकी याद से भी उबर जाते हो वो अकेलापन कुछ अलग ही होता है। स्टेडियम मिर्ची महफिल ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: यार बजट टाइट है, शॉपिंग कैसे करें?
2: बजट टाइट तो लुलू फैशन स्टोर चलो।
1: क्यों, वहाँ क्या मैजिक हो रहा है?
2: मैजिक नहीं, हाफ पे बैक।
1: ओहो, एक्सप्लेन करो जरा।
2: सिंपल रेडीमेड गार्मेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार्स, फुटवेयर, लेडीज बैग्स और बेबी एक्सेसरीज पे हाफ पे बैक।
1: मतलब 200 की शॉपिंग पे 100 वापस?
2: बिल्कुल, और वाउचर रिडीम भी इन्हीं कैटेगरीज में कर सकते हो।
3: ये हुई ना स्मार्ट शॉपिंग, लुलू फैशन स्टोर, हाफ पे बैक, शॉपिंग का स्मार्ट तरीका। स्पेंड QAR 200 एंड गेट QAR 100 फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली। लुलू फैशन स्टोर, लिमिटेड पीरियड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लुलू, व्हेन द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
4: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
5: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6
7: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ और अब इस महफिल में वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू
1: कि आपको मुखातिब कराएं हमारे आधुनिक हिंदी कविता के एक बड़े ही प्रमुख कवि और कथाकार से। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ केदारनाथ अग्रवाल जी की, जो कि बड़े सोशलिस्ट आइडियाज पे लिखा करते थे। साहित्य अकादमी के पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया और मेरी एक बड़ी ही पसंदीदा कविता है केदारनाथ जी की, जो उनकी विजुअल राइटिंग स्किल्स को दर्शाती है। केदारनाथ जी लिखते हैं कि आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, उसके दर्पण पर बादल का वस्त्र पड़ा था, मैंने उसको नहीं जगाया, दबे पांव घर वापस आया। वाह जी वाह, दिल खुश कर देता यार, इमेजरी हो तो ऐसी। सिर्फ मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. She can already read what's on your mind. She knows what you are thinking. Coming soon. Stay tuned.
1: Stay tuned.
2: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
3: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
4: बहुत कुछ होगा।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM, मिर्ची वन,
7: इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ, और जिस तरीके का माहौल है दुनिया में, हमारे देश में, उसमें ना प्रेम की शायरी करते हुए भी थोड़ी सी शर्म आती है, क्योंकि आप कब तक अपने दिल को अहमियत देते रहेंगे जब आपकी जो आसपास की दुनिया है उसको आपकी नजर चाहिए, उसको आपका एफर्ट चाहिए। अख्तर शिरानी साहब का शेर देखें, कहते हैं कि गमे जमाना ने मजबूर कर दिया वरना, गमे जमाना ने मजबूर कर दिया वरना, ये आरजू थी कि बस तेरी आरजू करते। आय हाय हाय हाय हाय, क्या सटीक बात है। गमे जमाना ने मजबूर कर दिया वरना, ये आरजू थी कि बस तेरी आरजू करते। अब तो बहुत सी आरजू है दिल में, है कि नहीं। आप कताशी है आपके साथ, मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi, it's hot.
3: आमिर खान, आप तो परफेक्शनिस्ट हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। किरण राव के बारे में कोई एक ऐसी चीज बताइए जो हमें नहीं पता।
4: किरण जो है अपना करियर जो एक तरह से कह सकते हैं बिगेन एज रेडियो जॉकी, करीबन 1.5 साल तक उन्होंने शो संभाला।
5: बहुत साल पहले जब FM शुरू ही हुआ था हमें एक बहुत लेट नाइट शो दिया गया था, विकेड आवर था, बहुत मजा आता था। मैं खुद जो मुझे चाहिए था मैं बजाती थी और मजा करती थी स्टूडियो में।
3: और किरण जी, अगर आज हमने ऐसा कर लिया ना, हमारी तो जॉब गई हाथ से। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और कुछ गाने आपकी जहन में बैठ जाते हैं यार
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ और हाँ जी अब वक्त है आज का ताशी अनप्लग्ड आपको सुनाने का और ये जो कलाम है ये एक सूफी कलाम है और सूफी लोग बड़े इंटरेस्टिंग मुझे लगते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं सारे रिलीजन्स के बीच में एक जगह है जहाँ पे वो रहते हैं वो सबके दरमियाँ हैं लेकिन वो किसी के भी पूरे नहीं हैं। आई रियली लाइक द सूफी फिलॉसफी बिकॉज इट्स ऑल अबाउट लव। बहरहाल पेशे खिदमत है सिर्फ आपके लिए।

वाह जी वाह, दिल खुद ही शांत हो जाता है, दिल खुद ही एक जगह पे ऐसी चला जाता है जो कि बहुत ही सफेद, बहुत ही प्योर है। बहरहाल स्टे ट्यून टू मिर्ची महफिल, बने रहे अपने ताशी के साथ। और अगर ऐसी गजलें नगमे और सुनना चाहें तो आप आ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर, यू नो व्हाट आई से, इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स मिर्ची हेल्पलाइन बोलिए।
2: मेरी ऑफिस में मेरे से बेवकूफ लोगों को ज्यादा सैलरी मिलती है, क्या करूँ?
1: ओ माय बॉय, तो तू ये सोच कि असली बेवकूफ कौन हुआ?
3: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: 89.6 मिर्ची वन. It's hot.
1: घड़ी में राइट एंगल का इशारा हो चुका है यार कि रात के 9 बज चुके हैं. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स राइट हियर ऑन मिर्ची.

one of the finest and most handsome villains, Danny. मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, या डैनी डेंजोंगपा। इनका जन्म सिक्किम में हुआ था, स्कूली पढ़ाई नैनीताल में, कॉलेज की पढ़ाई दार्जिलिंग में, और फिर फिल्मी पढ़ाई FTII पुणे में। वैसे ये ना इंडियन आर्मी में जाना चाहते थे, इनफैक्ट उनका एडमिशन आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे में भी हो गया था, लेकिन कुछ फैमिली रीजंस की वजह से उन्होंने वहां से एडमिशन विथड्रॉ कर लिया। फिर FTII में भी वो म्यूजिक सिंगिंग का कोर्स करने गए थे क्योंकि वो बहुत अच्छा गाते थे, लेकिन उसमें एडमिशन नहीं मिला तो एक्टिंग में एडमिशन ले लिया। यहीं पर उनकी दोस्त बनी जया भादुरी जी, जिन्होंने इनको सजेस्ट किया कि ये अपना नाम थोड़ा छोटा कर ले, क्योंकि उनका असली नाम सेरिंग फुनसोक डेंजोंगपा था। इनफैक्ट जया जी ने ही इनको ये डैनी नाम दिया। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो
3: हेलो
4: हेलो बहन जी।
3: हाँ जी।
4: ये एक सेकंड ये बहन जी हम आपके पड़ोस में रहते हैं। ये मेरा एक्चुअली बच्चा बहुत रो रहा है और मेरी वाइफ का फोन लग नहीं रहा है। वो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है। अगर
3: आपके घर में कोई नहीं है?
4: नहीं, वाइफ है, वो गई हुई है कहीं। तो आप थोड़ा सा, आपको अगर कुछ मालूम हो तो एक सेकंड
3: बेटा। चुप, आप अपनी वाइफ को फोन करिए ना, उन्हें बुलवाइए जल्दी।
4: नहीं नहीं, मैं उनको ही फोन कर रहा हूँ। एक सेकंड। आली है मामा आएंगी, मामा आएंगी। एक सेकंड बहन जी, आप होल्ड करेंगी? एक सेकंड सर। आएंगी मामा, आएंगी, चीजी लाएंगी बेटा, चीजी लाएंगी। नहीं, चुप हो रहा। आई एम सो सॉरी, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं ऐसे।
3: नहीं, इसमें डायपर पहना है तो चेक करिए, गीला तो नहीं है।
4: एक सेकंड, इधर आओ। हाँ इधर आओ, देखो मामा आ गई, चीजी लाई। हाँ, डायपर गीला है बहन जी इसका,
3: तो उतार लीजिए।
4: एक सेकंड रुकिए। ये इसके गले में अटक रहा है डायपर। एक सेकंड,
3: शायद आप बेब उतार रहे हैं उसका।
4: अच्छा, ये बेब है। एक सेकंड,
3: देखिए सुसु करा होगा उसने। देखिए,
4: हाँ सुसु करा। चुप,
3: उतार दीजिए।
4: एक सेकंड उतार दिया। मैं जी, मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा कह देंगे, मैं स्पीकर फोन पे लगा देता हूँ, शायद आपकी आवाज से समझ आ जरा। देखो आंटी कर रही
3: है।
4: क्लैपिंग करो।
3: चुप हो जाओ, पेट दर्द वगैरह ना हो, आप इसको डॉक्टर के पास लेकर जाइए।
4: हाँ, मुझे भी वही याद आ रहा है। नहीं बहन जी, आप सही कह रही हैं। रात को ना इसने वो मुर्गा खा लिया था, जिससे पेट में दर्द हो जाता है और थोड़े बहुत कान खराब हो जाते हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने आपका नंबर डायल किया।
3: और मैं पागल हूँ। ओह नो।
4: अब जरा मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए एक बार।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष।
5: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.
0: Purani jeans with Charu, only on.

0: 1979 की हॉरर फिल्म और कौन का ये गाना किशोर कुमार की आवाज में। अमित खन्ना ने ये गाना लिखा है, कंपोज्ड बाय बप्पी लहरी। एंड बप्पी दा ने ना इस गाने की कुछ ट्यून 1982 की फिल्म नमक हलाल के गाने में भी यूज की थी। मतलब इस गाने की जो स्टैंजास की ट्यून है ना, पैराग्राफ की, आपने सुने थे, एक बार वापस से सुनते हैं।
1: किसी को न पता चला क्या हो गया, ऐसी मिली नजरें के दिल खो गया।
0: समझ गए होंगे कौन से गाने में यूज हुआ है। नहीं, नमक हलाल का थोड़ी सी जो पीली है उसके स्टैंजास की ट्यून भी ऐसी है, सुनिए।
1: मेरा है जमाने से अलग रास्ता, मुझे भला दुनिया से क्या वास्ता।
0: और यहाँ जो हम सुनने वाले हैं वो है नमक हलाल का एक और आइकॉनिक सॉन्ग, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू, आपके साथ सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर.
1: She can already read what's on your mind. She knows what you are thinking. Coming soon. Stay tuned. Stay tuned.
2: दोस्ती का उसूल है मैडम. नो सॉरी नो थैंक यू.
3: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू. हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए.
4: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा.
5: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा.
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM मिर्ची वन.
8: इट्स हॉट.
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: 1981 की फिल्म नसीब का एक गाना है जिसमें सारे एक्टर्स विलन के अड्डे पे डांस कर रहे होते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, मतलब अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर, हेमा मालिनी, रीना रॉय, किम, ये सब फैंसी ड्रेसेस में होते हैं और विलन के अड्डे पे डांस कर रहे होते हैं। अब इसकी शूटिंग की एक इंटरेस्टिंग बात एक इवेंट में ऋषि कपूर साहब ने शेयर की थी, सुनिए।
1: सो पूरे गाने में सब लगे हुए थे एंड हियर वाज शत्रुघ्न सिन्हा नॉट बॉदर्ड सिटिंग ऑन द चेयर। उनकी वजह से रीटेक पे रीटेक एंड ही कुडंट केयर लेस। देन मनमोहन जी गॉट एन आइडिया, जैसे कोई लंबा आदमी हो जो डांसर हो, he was called to actually do the double of Shatrughan Sinha and do that Cossack dance. Now, hum sab lage hain apni taraf se zor laga rahe hain, we got to do best in this, that. And yahan Shatrughan Sinha camera ke peeche baith ke in his own inimitable style, shabash, karo dance, ye karo. And he has a double doing his belly dance. And the tragedy of this is that when the song was completed, when we saw, he took away all the credit also of the bloody song. शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या डांस किया यार।
0: नेक्स्ट टाइम आप जब ये गाना देखें तो ध्यान रखें कि जहाँ मुश्किल स्टेप्स है वहाँ शत्रुघ्न सिन्हा साहब आराम फरमा रहे हैं और उनका बॉडी डबल नाच रहा है। फिलहाल ये गाना सुन लेते हैं यहाँ पर पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

1964 की फिल्म मेरा साया का ये ब्यूटीफुल सॉन्ग संग बाय लता मंगेशकर, कंपोज्ड बाय मदन मोहन एंड रिटन बाय राजा मेहदी अली खान। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस फिल्म का नाम ना पहले सिर्फ साया होने वाला था, लेकिन फिर जब ये गाना बना, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो ये मेरा साया जिस तरह से इस गाने में बोला गया है ना, वो इतना सुंदर साउंड कर रहा था कि इस फिल्म की टीम को लगा कि इस फिल्म का नाम मेरा साया होना चाहिए, तो नाम बदल दिया गया। चलिए नेक्स्ट गाना सुनते हैं जिसमें भी ऐसी ही कोई फीलिंग दी जा रही है कि आप जहां भी जाएंगे हमें ही पाएंगे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।

1981 की फिल्म कुदरत का ये सुंदर गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान काफी बदसूरत से इंसिडेंट्स हुए थे, क्योंकि राजेश खन्ना साहब की सुपरस्टारडम उस टाइम डिक्लाइन पे थी, वो काफी अपसेट इनसिक्योर रहते थे। ऐसा सुनने में आता है कि विनोद खन्ना साहब, वो भी इस फिल्म में, तब कुर्बानी के बाद काफी हिट हो गए थे, लेकिन उनका ऐसे हिट होना राजेश खन्ना साहब को थोड़ा रास नहीं आ रहा था, तो उन्होंने कुदरत फिल्म के LP रिकॉर्ड से विनोद खन्ना साहब की फोटोज थी प्रमोशन में, वो हटवा दी कि भाई मेरी फिल्म में मेरी फोटो लगेगी। अभी क्या पता यार, सुपरस्टार होना और फिर सुपरस्टारडम का डिक्लाइन होना कैसा फील होता होगा। फिलहाल यहाँ पे फुल फील वाला सुंदर गाना सुनेंगे, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
2: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM Mirchi 1. It's hot.
0: Purani Jeans with Charu, only on

मैं ना जितेंद्र जी को जब भी देखती हूँ मेरे मन के बैकग्राउंड में एक डायलॉग चल जाता है, ओए मेरे गरम मसाले। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। बिकॉज जब मैं छोटी थी आई थिंक मैंने उनकी पहली फिल्म जो देखी थी वो थी कारवां। हमारे घर में वीडियो कैसेट थी एंड मुझे उनपे ऐसे छोटा सा थोड़ा सा क्रश भी हो गया था, इतने हैंडसम लग रहे हैं वो इस फिल्म में। तो इन द फिल्म वो और अरुणा ईरानी एक ही कारवां में होते हैं, मतलब वो जो शहर शहर जाके तमाशा दिखाता है कारवां उसका पार्ट होते हैं। और अरुणा ईरानी इनको लाइक करती है, फ्लर्ट करती रहती है और इनको प्यार से गरम मसाला बुलाती है, ओए मेरे गरम मसाले। वैसे आपको पता है इसी 1971 की कारवां फिल्म के बाद अरुणा ईरानी जी को एज एन एक्टर एज अ डांसर सीरियसली लिया जाने लगा था। उनको फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नॉमिनेशन भी मिला था। और इसमें जो उनके डांसेस थे, फिर चाहे दिलबर दिल से प्यारे वो गाना हो या ये वाला गाना हो जो हम सुनने वाले हैं पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्ची।

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका फेवरेट।

0: वहीदा रहमान जी फिल्मों के सेट्स पे ना ज्यादा नहीं बोलती थी। पिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इस वजह से कई बार डायरेक्टर्स के साथ उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती थी, बिकॉज ठीक से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था रोल को लेकर, सीन को लेकर। कितने ऐसे डायरेक्टर्स थे जो बिना कहे उनकी बात समझ जाते थे या वो उनकी बात समझ जाती थी। सुनिए एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: कम, बहुत कम। ज्यादातर डायरेक्टर्स ये कहते थे, भाई बात नहीं बनी, इसको और थोड़ा कुछ कीजिए। तो मैं पूछा करती थी, कुछ का क्या मतलब? ये जो कैरेक्टर है बहुत हार्श है, नहीं समझदार है, यानी प्रिटेंशियस है, नहीं क्या है? नहीं, ये सीन जैसा भी है कि उसको जरा आप ऊंचा करके कीजिए। मैंने कहा ऊंचा से मतलब थोड़ा, मतलब थोड़ा लाउड होना चाहिए। और मेरा बेसिक नेचर और मेरा कैरेक्टर प्ले करने का रवैया ज़्यादातर यू नो अंडर प्ले करना, स्ट्रेन्ड एक्टिंग, तो उसमें ज़रा मुश्किल हुआ करती थी। एक गुरदत्त जी थे, फिर एक अशित सेन और विजय आनंद से मेरी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी। तो बहुत कम लोग मुझे मिले जो यू नो कि वो जो कह रहे मैं समझ जाऊँ, जो मैं कहना चाहती थी मेरे से यू नो अग्री कर दे।
0: वैसे देवानंद साहब के साथ भी इनकी बहुत जमती थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
2: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: प्रियंका चोपड़ा, आपने विशाल भारद्वाज के साथ दो फिल्में की हैं, देयर इज सात खून माफ, देयर इज कमीने। आप दोनों की जुगलबंदी को देख के लगता है कि बहुत मजे आते होंगे सेट पे।
4: हाँ, लगता ही है। He's the kind of director, as an actor, you have to really trust him. Because his ideas come from where you'll never understand. And if you start justifying it, जैसे अगर उन्होंने कुछ बोल दिया, जैसे कि you know, तुम यहाँ पे सीढ़ियों से आ रही हो, अगर मैं सोचने लगी कि मैं सीढ़ियों से क्यों आऊंगी, तो फिर तो मतलब आपकी कभी नहीं बनेगी। But you have to trust him.
3: ये थी प्रियंका चोपड़ा talking about विशाल भारद्वाज on मिर्ची, it's hot.
1: Bollywood बोल डाल,
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,
1: only on Mirchi, it's hot.

1981 की सुपर डुपर हिट फिल्म तेरे मेरे बीच में का ये गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये रति अग्निहोत्री जी की डेब्यू फिल्म थी, लेकिन इसमें हीरोइन के काम के लिए ना बहुत सारी एक्ट्रेसेस को अप्रोच किया गया था, जिनमें से एक थी पद्मिनी कोल्हापुरी भी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि वो उस फिल्म की शूटिंग कर रही थी जिसका हम गाना सुनेंगे अभी, जमाने को दिखाना है। और क्या गाना है, आर डी बर्मन की कॉम्पोजिशन, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ, शैलेंद्र सिंह की आवाज। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची

1977 की एक फिल्म है, यही है जिंदगी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इसमें मेन लीड में है संजीव कुमार साहब और ये एनएफ होना चाहिए फिल्म देखने के लिए। तो ओवरऑल फिल्म इतनी बढ़िया नहीं है, कुछ एक्टर्स हैं उनकी कास्टिंग इतनी ठीक नहीं है, लेकिन संजीव कुमार का काम पैसा वसूल है। उसमें वो एक ऐसे इंसान का रोल प्ले करते हैं जो ऊपर वाले में विश्वास नहीं रखता है, उसको अपनी काबिलियत, इंटेलिजेंस, अपनी मेहनत पे भरोसा है। वो गरीब है और उसको लगता है उसकी लाइफ में अगर पैसा आ गया तो वो मेहनत से और पैसे बढ़ा लेगा और खुश हो जाएगा, पर उसकी लाइफ में पैसे आने से पहले साक्षात भगवान आ जाते हैं, श्री कृष्ण उससे मिलने आते हैं। फिर इनकी लाइफ में कुछ पैसे आते हैं, ये मेहनत करके बहुत रईस हो जाते हैं, लेकिन क्या उनको वो खुशी मिलती है जो उनको लगता है कि पैसे आने के बाद मिलनी थी? दैट इज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। तो कभी ऐसे ही टाइम पास के लिए आप ये फिल्म देख सकते हैं, यही है जिंदगी। फिलहाल गाना सुनेंगे उस फिल्म का जिसमें परफॉर्मेंस के लिए संजीव कुमार साहब को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, आंधी फिल्म। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

आपको पता है सुभाष कई साहब शत्रुघ्न सिन्हा साहब की वाइफ पूनम सिन्हा के राखी ब्रदर हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और 1970 से हैं। तो जब 1976 की फिल्म काली चरण की शूटिंग हो रही थी उस टाइम सुभाष कई एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन में थे। वो सिचुएशन ये थी कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब तब उनकी वाइफ जो तब उनकी गर्लफ्रेंड थी उनको भी डेट कर रहे थे पूनम जी को, और रीना रॉय जी को भी डेट कर रहे थे जी। तो ये चीज सुभाष घई के लिए बड़ी डिफिकल्ट हो जाती थी बिकॉज फिल्म के सेट पे वो रीना रॉय के साथ रहते थे। बताइए बड़ी बड़ी फिल्मों के पीछे क्या क्या कहानियां होती हैं, पता भी नहीं होता। फिलहाल इसी फिल्म का ये गाना सुनेंगे पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: She can already read what's on your mind. She knows what you are thinking. Coming soon. Stay tuned. Stay tuned.
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते. जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है.
3: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है.
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं कि आपका काम ही आपकी दुनिया बन गया है, बाहर आपकी कोई दुनिया ही नहीं है? फिर से सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आपके कलीग्स ही आपके दोस्त बन गए हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि वही आपका परिवार है शायद, क्योंकि परिवार वालों से ज्यादा तो अपने कलीग्स से मिलते हैं। एक इंटरव्यू में सुनिए माला सिन्हा जी ने क्या शेयर किया था कि क्यों फिल्म इंडस्ट्री के बाहर वो दोस्त वगैरह नहीं बना पाई।
1: हमको मौका कहाँ मिला कि हम बाहर के लोगों से मिले। जब पिक्चर हिट होती है, एक के बाद पिक्चर आती जाती है, आप काम करते जाते हो तो माहौल वही होता है। हमारा परिवार वही डायरेक्टर, वही प्रोड्यूसर, वही कलीग्स, हमारे जितने साथी वर्कर आर्टिस्ट, वही हमारे परिवार होते हैं। हमने एंजॉय बहुत किया, बहुत आई लाइक। हालांकि मैंने और चीजें बहुत मिस किया, मतलब सैक्रिफाइस त्यागना पड़ा, जैसे बाहरी दुनिया के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, स्कूल के दोस्त, अपने परिवार। भाई मेरे अपने कजिन सिस्टर से भी मिलने का मौका नहीं मिलता था मुझे, वही तो मेरे परिवार।
0: चलिए इसी बात पे माला सिन्हा जी पे पिक्चराइज्ड ये ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

लिरिसिस्ट SH बिहारी साहब के पास बहुत टैलेंट था, लेकिन किस्मत उनके साथ उतनी नहीं थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। उन्होंने फिल्मों में गाने लिखना लेट 40s में शुरू किया, मिड 50s में उनके कुछ गाने हिट हुए, फिर मिड 60s में। इस बीच उनको काफी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। उनके करियर में चढ़ाव कम थे, उतार ज्यादा थे। 70s उनका काफी डल रहा। लेट 70s में उन्होंने एक एक्सीडेंट में अपना बेटा खो दिया। 19-20 साल का उनका बेटा रहा होगा तब, और फिर कुछ साल बाद अर्ली 80s में दूसरा बेटा भी एक एक्सीडेंट में नहीं रहा। ये बात उनकी डॉटर ने एक इंटरव्यू में शेयर की थी। 80s में करियर वाइज कुछ चीजें बेटर हुई। बिहारी साहब ने प्यार झुकता नहीं फिल्म भी लिखी और उसके गाने भी। ये फिल्म 1985 में रिलीज हुई, लेकिन 1987 में खुद बिहारी साहब नहीं रहे, हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। सच इज लाइफ। सोचिए ये गाना लिखते हुए जो हम अभी सुनेंगे वो क्या गो थ्रू कर रहे होंगे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: नहीं! बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
2: अरे, पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
3: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: इस गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सैयद कादरी ने। फिल्म आवारापन 2 से सुनते रहिए वे जुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6,
1: it's hot.

इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।